हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम से आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया।

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर करिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दी जय गुरु पूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुरु शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी हर हर अमृत हर मन पावे मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे पागीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सत्संग न लब्बे बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल में लाइए मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया गुरपूरे हर रस मुख पाया पागहीन सतगुरु नहीं पाया मन मुख गर्व जूनी नित पौंदा जियो। आप दयाल दया प्रवतारी मल हो मैं बिख्या सब निवारी नानक हट पट्टन विच काया हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता जाए पुछा जन हर की बाता पाप मलोवा मल मल तोवा मिल हर जन हर रस पी चै जियो। सतगुर दाते नाम दृढ़ाया वड पागी गुर दर्शन पाया अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरे अमृत ली चै जियो। हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए मिल सत्संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी।

वारिया जो मेरा प्रीतम दसे तिसके हो वारिया मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन हो सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपुर हर नाल दिखा लिया हो सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी एक नदरी आया हो सतगुरु विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों को लीजियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदे तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निध तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहारे सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में ताड़

कोई पाया तृप्त अगाए रहा है संतो गुर अनुभव पुरख दिखा रहा जियो। आपे राजन आपे लोगा आप निर्वाणी आपे पोगा आपे तख्त बह सच न्याई सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया तिस रस आया जिन भेद लया ज्योति ज्योत मिली सुख पाया जन नानक इक पसारिया जियो। माज महला पंजवा जित कर तिर सुहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया अनद विनोद तितै कर सोहे जो तन कंत सिगारी जियो। सा गुणवंती सावड पागण पुत्रवंती सीलवंत सुहागण रूपवंत सा सुगड़ विचखण जो तन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई प्रधाने सब सिंगार बने तिस ज्ञाने सा कुलवंती सा सब राई जो फिर कह रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन न जाए जो फिर मेल लई अंग लाए फिर सुहाग वर अगम गोचर जन नानक प्रेम सधारी जियो। माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे पांत पांत बन बन अवगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मिलावे जियो। खट सासत विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीरथ स्नाना निवली कर्म आसन चौरासी इनमें सांत ना आवे जियो। अनक बरख किए जप तापा गवन किया धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवे जोगी बहुड़ बहुड़ उठतावे जियो। कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल तीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावे जियो। माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो गुरमुख गाती जियो। गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाये होरत कितै न पाती जियो। निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकाती जियो। अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दा तारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक विरली जाती जियो। माज महला पंजवा कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माना सब किछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो। पाने उजड़ पाने राहा पाने हर गुण गुरमुख गावाहा पाने परम पवे बहु जूनी सब किछ तिसे रजाई जियो। ना को मूरख ना को स्याणा वरते सब किछ तेरा पाना अगम अगोचर बेअंत अथाह तेरी कीमत कहन न जाई जियो। खास संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन आघावे नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा दुख तदे जा विसर जावे उख व्यापे बहु विदतावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा जी संभाली ता सब दुख लथा चिंता रोग गई हौ पीड़ा आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा देन दे तोट नाही प्रभ रंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हृदय नाम दे निर्मल किए
ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਸਾਲਾ।

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायण मंत्र पतायण, गुरुमुख अमृत पीवा जियो, दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते

अवसर करो हमारा पूरा जियो। दर्शन तेरे पवन पुनीता, आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बिदाते, खुद जेवड़ अवरना सूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे कूरा जियो। माज महला पंजवा, विसरना ही एवड़ दाते, कर कृपा भगतन संग राते। दिन सरैन ज्यो तुद त्याई, एहो दान मोहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सब किश दिया पलिया जाई। अनद बिनोद चोज तमासे, तुद पावे सो होना जियो। जिस दा दिता सब किश लेना, शक्ति अमृत भोजन खाना। सेज सुखाली शीतल पवना, सहज केल रंग करना जियो। सा बुद्ध दीजै जित विसरे नाही, सा मत दीजै जित तुद त्याई। सास सास तेरे गुण गावा, कोट नानक गुर चरणा जियो। माज महला पंजवा, सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई। सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावे, पाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करे प्रतपाला, संत खेले तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन के मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अघाना जियो। माज महला पंजवा, तू जल निद हम मीन तुम्हारे। तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे। तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारिक पी खीर अगावे, ज्यो निर्धन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यो अंधियारे दीपक परगासा, परता चितवत पूरन आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत अन्...

संतनमो को हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा। अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चट अगले देखे, मन हर रस सबते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे, नाम निधान तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन उठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना, जिन हर साध पाया सो नाहे डुलाना, तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मस्तक पागी था जियो। हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे, तिस लग मुक्त पय कनेरे, नाम निधाना गुरुमुख पाये, कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा। निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ गैर गंभीर है, लाख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पय पुनीता, सगल उधारे पाई मीता, अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जां को खोजे सर्व उपाय, वड पागी दर्शन को विरला पाए, ऊंच अपार अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त पया जिस हृदय वसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा। प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठक बैठक सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया, किलबिख काटे निर्मल थिया, आनंद पया निकसी सब पीरा, सगल बिना से दर्दा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा, सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए, गुर पेट तो हों गई बलाए, सास सास हर गावे नानक, सतगुर टाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा। ओत पोत सेवक संग राता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता, पानी पखा पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुकम साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने, जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया, तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गहर जियो। माज महला पंजवा। सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बार सुहेला जियो। चिम चिम वर्षे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूका हरिया, सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यों जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुड़ ना होई है जौला जियो। माज महला पंजवा। तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिस

तू प्रीतम ठाकुर अतपारी, तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे, पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन पारो, तुमरी कृपा ते हुए परगाता, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई, चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पए निहाला जी।

सर्व जिया को देवन हारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो, मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान की

जल फल मैयल जयदीश्वर साया, सांत पल बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आते बख्श करे जी सारा, अपने की तेनो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जाकी शरण पया गत पाये, साफ साफ हर नाम ते आये, तिस बिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तुझ ते आई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाज लगी लिव अंतर, सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वरते मेरा, सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने, सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जियो। हथी दिती प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते है, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा थान न दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाण किछु न जापे, अपने संतानो आप सहाये, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच चित आई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा तर्क सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितों कुर्बानो जियो। सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सच शब्द मन मानो जियो। सच सालाहन बड़ पाजमी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है, रंग रते तेरे तुद पावे, सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई, नानक सच ते आई है सद ही, अंतर जामी जानो जियो। माज महला पंजवा, रैन सुहावड़ी दिन सुहेला, जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाथे, अंतर बाहर हर प्रभ साथे, तै पाओ परम खोया गुरपूरे, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंचा पारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे सादर वाला, देह दान नानक।

थापे, तुद बिन अवर न कोई करते, मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेवया तिन

पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जीओ। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत विण होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जीओ। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सु दीजे अपना वारे, आठ पैर गोविंद।

नानक नाम त्याय त्याय जीवे, बिनस्या परम पौ तीथा जियो। माज महला पंजवा, झूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अनदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांचे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाय, जित सिमरत वर ने चल पाये, नानक कौ प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया, महला पहला कर पहला, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा, सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी सबद सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुख दाता, गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछोतावणिया। हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सके, छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच

माया मोह शब्द जलाया सचो सच्चा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी हर नाम समाले सेवड पागी सच्चे शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे अंदिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावणिया पर परखा के सांत ना आई तृष्णा जाले सुध न काई बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे कूर बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाना नानक एको नाम वरत है मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरते सब तेरे मर मर जमे फेर पवे कनेरे तू एको ने चल अगम अपारा गुरमती बूझ बुझावणिया हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया तिस रूप ना रेखिया वरन ना कोई गुरमती आप बुझावणिया रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरते सब थाई ज्योति जोत मिलावणिया तिसना अगन जले संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्म पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया गुर का शब्द को विरला बूझे आप मारे ता

गुर के सब सदर है समाए, सच सलाही सब खट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच ने चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सलाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हों वारी जियो वारी, सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, शब्दो सुन तिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर शब्दे तोवे, निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे शोभा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो शब्दे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसे मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सो है, अत उजल नाम ते आवणिया। हों वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए, गुर के पै उजल होमे मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्दे नृत्य करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपट दुख पावणिया। गुरुमुख भगत जा आप कराए, तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजे शब्द वजाए, गुरुमुख भगत थाए पावणिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर के शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईए, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सलाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन, गुरमत मन वसावणिया। हों वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवे से सदा सोहे, शोभा सुर सुहावणिया। रहाओ सबको तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरे मन पाए, सत बाणी तुदे सलाहन, रंग राते भगत करावणिया। सबको सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिले तां

तू कै फेरा जा तुद पावै ता नाए रचावै तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया इक स्यों लिव लागी सधी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए नौ निज नाम वखरा मन आए पूरे पाग सतगुर पाया सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता तू आपे मेले गुरमुख जाता तू आपे देवे नाम वडाई नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुझ सलाही गुरमुख जाता दूजा को नाही एक सो मन रहा समाए मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है साचे ठाकुर वे परवाहे नानक नाम।

तेरे पद सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

न होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारन तिना ठौर न ठाओ, तम पूले ज्यों सुन्ने कर पाओ, हलत

कूड़ लिखे तै कूड़ कमावे है, जल जावे कूड़ चितलावण्या। गुरुमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावण्या। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरु प्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे। हों मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे। मन निर्मल अंदिन भगती राता, भगत करे हर पावण्या। हों वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावण्या। तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे, जो अंदिन हर गुण गावण्या। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए। पूरे भाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावण्या। मर मर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए। सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे सहज समावण्या। बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, देशांतर पवे दूजे पाए खुआए। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्दे दुख पावण्या। तावत राखे ठाक रहाए, गुर प्रसादी परम पद पाए। सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावण्या। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए। आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिखावण्या। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाले पगत जा हों में सोखे। सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावण्या। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई। नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावण्या। माज महला तीजा, इस गुफा में अखुट पंडारा। तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा। आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप जावण्या। हों वारी जियो वारी, अमृत नाम।

मनमुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावण्या। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए। बैस सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे शब्द सुमावण्या। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावण्या। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा। सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावण्या। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई। नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावण्या। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे। काल न जो है दुख न संतापे, हौमे मार बंधन सब तोड़े। गुरमुख शब्द सुहावण्या, हौ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावण्या। गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से ती चित लावण्या। रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण, आरजा ना छीजे शब्द पछाण। गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच्चों आप गवाए। आप करे कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हो मैं चूके पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सह समावण्या। गुरमुख नाम मिले वड्याई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई। सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावण्या। गुरमुख अनदिन सब दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता। गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे भगत करावण्या। बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल गरठे करे पुकारा। अनदिन रोगी बिष्टा के कीड़े, बिष्टा में दुख पावण्या। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए। नानक नाम मिले वड्याए, पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा। शब्द दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तोन कट अंतर। आपे बनत बनावण्या, हों वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गावण्या। बाज गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावण्या। रहाओ तू आपे सो है, आपे जग मोह है। तू आपे नदरी जगत परोवे है। तू आपे दुख सुख दे रहे करते, गुरमुख हर देखावण्या। आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए। शब्दे उपजे अमृत बाणी, गुरमुख आप सुनावण्या। आपे करता आपे पुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता। सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलख लखावण्या। आपे माया आपे छाया, आपे मोह सब जगत उपाया। आपे गुण गाता गुण गावे, आपे आप सुनावण्या। आपे करे कराए आपे, आपे थाप उठापे आपे। तुझते बाहर कछु न होवे, तू आपे कारे लावण्या। आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए। सेवा ते सदा सुख पाया, गुरमुख सहज समावण्या। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई। नानक नाम वसे कट अंतर, आपे वेख विखालण्या। माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर

हर जग जीवन निरपव दाता गुरमत सह समावणिया रहाओ। कर मैं करती तौल पताला काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुखदाता गुरमत सह समावणिया। काया अंदर हो मैं मेरा जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे सचो सच त्यावणिया।

पाया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावण्या। कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े होमे मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम ते आवण्या। अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलावण्या। अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वन जे सदा वपारी, लाहा नाम सद पावण्या। आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावण्या। माध महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए, हर

सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावण्या रहाओ। आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर रस पावण्या। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हों में परम चुकाया। अंदिन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावण्या। गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे। हर गुण गावे शब्द सुहाए, मिल प्रीतम सुख पावण्या। जम जागाती दूजे पाए कर लाए, नामों पुल्ले देश जाए। करी मोहत का लेखा लेवे, रतियो मास

फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन फिर राखिया कंठ लाए सबदे फिर गावे से सुहावणिया आपे देवे सब बुलाए अपना नाम मन वसाए नानक नाम मिले वडियाई अंदिन सदा गुण गावणिया माज महला तीजा उत्तम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवे कर माहे उदासा हर रंग रहे सदा रंग राते हर रस मंत्रित तावणिया हो वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावणिया गुरमुख पढ़े हर नाम सलाहे दर सच्चे शोभा पावणिया रहाओ अलख अपेयो हर रहा समाए उपाय ना किती पाया जाए कृपा करे ता सतगुर पेटे नदरी मेल मिलावणिया दूजे पाए पड़े नहीं बूझे त्रिविद माया कारण लूजे त्रिविद बंधन टूटे गुर शब्दी मुक्त करावणिया त्यो मन चंचल वख ना आवे दुबदा लागे दह दिस्तावे बिखा कीड़ा बिखने राता बिखी माए पचावणिया हों हों करे तै आप जनाए बहु कर्म करे किस खाए न पाए तुझते बाहर किछु न होवे बसे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अंदिन दूजे पाए फिराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश सिगार बनाए मन मुख अंध ऐसे कर्म कमाए हलत न शोभा पलत न टोई बिरथा जन्म गवावणिया हर का नाम किने विरले जाता पूरे गुर के शब्द पछाता अंदिन पग

वेद पढ़े हर रस नहीं आया, वाद बखाने मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया, अकथो कथिए सबद सुहावे, गुरमती मन सच्चो पावे, सच्चो सच रवे दिन राती, एहो मन सच रंगावणिया, जो सच रते तिन सच्चो पावे, आपे दे ना पछो तावे, गुर कै शब्द सदा सच जाता, मेरे सच्चे सुख पावणिया, कूड़ कुसत तिना मैल ना लागे, गुर प्रसादी अंदिन जागे, निर्मल नाम वसै पट पीतर।

मोह व्यापे किछ सूजै नाही, गुर शब्दी हर पावणिया। वेद पुकारे त्रिविध माया, मन मुख न बूझे दूजे पाया। त्रै गुण पड़े हर एक न जाने, बिन बूझे दुख पावणिया। जा किस पावे ता आप मिलाए, गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए। नानक नावे की

तो पंडित होई आसर सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चक साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे ने कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत शब्द साचे हर सर्वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस्नान करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया

माया मोह जलाए सो हर्षों चित लाए, हर दर मैली सो बापावण्या रहाओ। देवी देवा मूल है माया, सिमरत सास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावण्या। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जप सत संजन सच कमावे, गुर पूरे नाम त्यावण्या। पेयड़े तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलक पलक दोवे गवाए, सुपने सुख न पावण्या। पेयड़े तन कंत संभाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, फिर कैसे रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावण्या। सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाव गुर शब्द जलाया, एको रव रहा कट अंतर, मिल सत संगत हर गुण गावण्या। सतगुर न सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चित न आवे, बिन नावे बहु दुख पावण्या। जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाणे, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावण्या। माज महर

गुरुमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे शोभा पावणिया। मन मुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर सबदी सुख पावणिया। माध महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर।

तो बत्ता कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो। किन विद बांदा किन विद छूटा किन विद आवन जावन तूटा कौन कर्म कौन ने कर्मा कौन सो कहे कहाए जियो। कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन विद मिलिए किन विद बिछरे ए विद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अक्षर जित पावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता तन गिरही उदासी गुरुमुख गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा गुरुमुख आवन जावन तूटा गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित पावत रहता गुरुमुख उपदेश दुख सुख सहता गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे आपे करे कराए थापे इकस से होयो अनंता नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा हर परवंता ता जन खरा सुखाला जी प्राण मान सुख दाता तू करे सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी गुरुमुख मंतन पावने।

भक्ति पाए पय पंडारा, दया तार राखे तुझसे पूरे कर्म समावण्या। अंधकूप ते कंडे चाड़े, कर कृपा दास नदर निहाले, गुण गावे पूरन अविनाशी, कह सुन तोट ना आवण्या। ऐसे ओथे तू है रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगर न पोहे तिनको, रंग रते गुण गावण्या। क्या गुण तेरे आख समाली, मंथन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत।

तू साहिब सरण सुखदाता सत संगत जप प्रगटावणिया। तू ऊंच अथाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया। माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंख न जाइए तो सा हर का

तक जिस दे पाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया ए रस पोगन पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हारे तेरा थिर हुआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल नान।

हर जप जपे मन फीरे रहाओ, सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए पै दूरे। शर्म आवे पार दम की ता फिर काहे चूरे, चरण सेव संत साज के सगल मनोरथ पूरे। कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे, पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे। सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे, करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे।

जल बिन साफ कुमलावती, उपजे नाही दाम, हर ना न मिलिए साजने, कत पाये विश्राम। जित कर हर कंस न प्रगटे, पथ नगर से ग्राम, सर्व सिगार तंबोल रस।

पास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा किस लगे जिस मन हर चर

पकड़ चलाएं दूत जम किसे ना देनी पेट छंद खड़ोते खिने माहे जिनसों लगा हेत हाथ मरोड़े।

इच्छुकुनी वड पागुनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाय। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलक

नानक जीवै जप हरि दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमाणी थाओ हर ओट गही मन अंग

खेड, पंजवे खान पीन की तात, छेवे कामना पुछे जात, सतवे संज किया परवास, अठवे क्रोध हुआ तन नाश।

मर जम में आया जाया दिन सतगुरु मोह न कुटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम की आई है सुख रजा जा कुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

कपड़ पहरा तोवा सदाकार बग्गा रत्ता पीला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रामल तारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना हो होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मल मल तोवे अंदा फूल पया जम जाने वस्त्र पराई अपनी कर जाने हो मैं विच दुख काले

मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हर्षों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणित गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सो होग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। कूड़ बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लहे, छप्पड़ नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम के आए, ओ आप छुटा कुटंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि सदाए, जन नानक तिस बलिहारण है जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक भगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गृही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमती काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मन उदासा, नानक सतगुरु।

पीते जो रस पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। नानक नाम खुदाई का दिल हच्छे मुख ले हो अवर दिवा।

जा मन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज खाली कीजे भोग विलास। क्या लश्कर क्या नेब खवासी आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए। सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए। फुरमानी है कार खसम पठाया, तबलबाज विचार सबक सुनाया। एक होए असवार इतना साखती,

कण लया तन चार दो कुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बैठ जो दर रहे सोबरे नानक अजब जिठ मैला पहला वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाए कुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए रस कस टत्तर पाई है तपे तै बिल लाए पीसो फोग संभालिए दिच्चे अग जलाए नानक मिठे पत्री है वेखो लोका आए पावड़ी इकना मरन ना चित आस कने रिया मर मर जम्मे नित किसे ना के रिया आप नड़े मन चित कहन चंगे रिया जमरा जय नित नित मन मुख हे रिया मन मुख लून हराम क्या ना जानिया बद्दे करन सलाम खसम ना पाणिया सच मिले।

सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगे मनियन गुर के प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार। श्लोक महला पहला, हम जे जिमी दुनिया पीरा मसालता राया, मेरवद बादशाह अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव

काओ थान तिना मास्थ वाले ए चलाए रहा नदियां विच टिब्बे जे खाले थली करे असगा कीड़ा खात दे पात साई लश्कर करे स्वाहा जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों।

कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नाम है सब विश्व कह जय खाई है, सच्चा सबल सलाह है सच समा

गुरमुख रतन सो ले वे पौड़ी, पगता ते संसारियां जोर कदे ना आया, करता आप अफुल है ना फुल है किसे दा फुलाया, भगत आपे मेलियन जिन्नी सच्चो सच कमाया, सहसारी आप खुआयन जिन कूर बोल बोल दिख खाया, चलन सार न जानी काम क्रोध विस वधाया, भगत करन हर चाकरी जिन्नी अंगिन नाम ते आया, दासन दास होए कै जिन्नी विच्चों आप गवाया, ऊना खसमे कै दर।

करम पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल। पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित काट सच ना पाए सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वत तोल तुलाई है कोई ना आखे तत हो।

ताकि बहुर ना पाई ताओ। सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास, उथे पाप पुन बिचारी है कूड़े कत्ते रास। उथे खोटे सती है खरे की चैसा बास, बोलन

오멜 쿠와이에 सच्चे शब्द निशान थाक न पाये सच सु बुजव खान महल बुलाये श्लोक महला पहला तेरा अग्नि हृदय पर बांधा पूजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा तरती हाथ चलाई तारता राजी अंबर कोली पिछे टंक चलाई एवड वद्दा मावा नाही सबसे नथ चलाई एता तान होवे मन अंदर करी ते आस कराई जेवड़ साहेब तेवड़ दाती दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिस ऊपर सच नाम वड्याई महला दूजा आखन आख ना रजिया सुनन ना रजे कन अखी देख ना रजिया गुण गाहक इक वन पुखिया पुख ना उतरे गली पुख ना जाए नानक पुखा तां रजे जां गुण कह गुणी समाए।

ते सागरं संसारस गुर प्रसादी तरह के करण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वश है जिन कल रखी तार पौड़ी खसने के दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विकसिया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कदे मार सज्जन सरसिया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसिया सच्चा शब्द विचार काल विदुषिया ताडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक महला पहला खत्यों जम्मे खत्ते करनित खत्या विच पाहे होते मूल ना उतरे जो सो तोन पाहे नानक बख्शे बख्शिये नाहे तपाई पाए महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगिये सुख सुख दुख दोए कर कपड़े पैरे जाए मनुख जिथे बोलन हाई है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरब अलग सिरज निहालिया उजड़ पुले रहा गुरवे खा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समा लिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे सबल सलाहे सुखिये सच वालिया निदरिया डर लग गर्व से गालिया नावों पुला जग फिर बेता लिया श्लोक महला तीजा पैर च जमे पै मरे पीपो मन में होए नानक पैर च जे मरे सहला आया सोए महला तीजा पैविन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैविन जे मरे मोह काले उठ जाए पौड़ी सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरी है सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुरु होए दयाल ता जम का डर के हा सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुरु होए दयाल ता नव नित पाई है सतगुरु होए दयाल ता सच समाई है श्लोक महला पहला सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई फोल फदीहत मो लैन परासा पानी देख सगाही पेगा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोमन ताही ओना पिंड ना पत्ता।

नानक ता पत जानिए जा पत रखे सोए पौड़ी। तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया, तू सच्चा दीवान होर आवन जानिया। सच जे मंगे दान सेत दे देहा, सच तेरा फुरमान सब दे सोया। मनिए ज्ञान त्यान तुदे ते पाया, कर्म पवे निशान ना चले चलाया। तू सच्चा दातार नित देवे चले सवाया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक महला दूजा, दीखिया आख बुझाया।

सब कुछ सूझे कह कह कथना माया लूजे हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने सर्व विचार अखर नानक अखियो आप लह परात होवे जिस दात पौड़ी हाउ टा

कौमुच पारावड्डा कोल मन मत हौली बोले बोल सिर पर चलिए सही है पार नगरी करमी गुर विचार कै बिन कोई ना लंगस पार कै पाओ राख्या पाए सवार रहाओ पै तन अगन पखे पै नाल पै पाओ कड़िए सब दुसवार कै बिन कारक कच निकच अंधा सच्चा अंधी सच बुद्धि बाजी उपजे चाओ सह स्यानप पवे न पाओ नानक मन मुख बोल।

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसमान,

तू सबना का सोए जाके जी जंत तन माल नानक आखण बिखम विचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख

गौड़ी महला पहला पौने पानी अग्नि का मेल चंचल चपल बुद्ध का खेल नौ दरवाजे दसवां द्वार गुजरे ज्ञानी यो विचार कत्ता बक्ता सुनता सोई आप बिचारे सो ज्ञानी होई राव देही माटी बोले कौन बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन मुई सुरत बाद अंकार ओ नाम हुआ जो देखन हार जय कारण पट तीरथ जाही रतन पदार्थ पट ही माही पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने पीकर हो दी वक्त न जाने हाँ नाम हुआ मेरी मुई बलाए ओह नाम हुआ जो रहा समाए कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया मरता जाता नदर नाया गौड़ी महला पहला दखनी सुन सुन गूजे माने नाओ ताके सब बलिहारे जाओ आप पुलाए ठौर न ठाओ तू समझावे मेल मिलाओ नाम मिले चले मैं नाल बिन नावे बांधी सब काल।

सीख हुक्म संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे क्यों बांधियो क्यों मुक्ति पावे क्यों

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस पारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू।

वाह वाह साची मैं तेरी टेक, हूँ पापी तू निर्मल एक रहाओ, अग्न पानी बोले पढ़वाओ, जेवा इंद्री एक सुआओ, दिस्त विकारी ना।

परपंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला, उल्टो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन।

जय रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर कई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ, किस जाचो नहीं को खाओ, नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ। सतगुर मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर

आ गए होए ज्योतिष पाना सोई हुआ अगर न करने वाला दुआ न जाना कर्म केवड़ तेरी दात कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहा तू एवड़ दाता देवन हार सोत नाही खुद भगत पंडार किया गर्द न आवे रात जियो पिंड सब तेरे पास तू मार जीवाले बख्श मिलाए जो पावी त्यों नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे परोसे तेरे तन में मैल नाही मन राता गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत शरणाई दौड़ी महला पहला जिन अतख कहाया अपियो पी आया हम सह मिसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सह सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांझ बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला।

सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना। रहाओ चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत पास्त पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जां कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत पाया रह सुखाली, बाजी एहो संसारो, लग लोभ मुक्त।

हाँ तुद आसा मेरी काया, तू सुन सिखा मारी, निंदा चिंदा करें पराई, झूठी लाए तबारी।

पावन पल्ला पाया। हल्त न सोबा पलत न टोई एला जन्म गवाया। हौ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना, रहाओ साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे, जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले, गौड़ी चेती महला पहला। अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस

साधना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मड़ोली लूटिया देहोरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल।

मुंदरा ते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंसाता पंच चेले वस की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मुंड मुंडाए जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन सारण हार स्वामी एक न चेतस अंधाता कर पटंब गली मन लावस संसा मूल न जाविस्ता एक चरणी दे चित लावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस आना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे मन एको साहिब।

राख नेरी सूजस नाही लज टूकस मूसा पाई रे। मन मुख करे ते का दुख लागे गुरमुख मिले बढ़ाई रे। जो तिन किया सोई हुआ कीर्तना मेटिया जाई रे। सुबर भरे ना होवे ऊने जो राते रंग लाई रे। तिन की पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किछ पाई रे। गौड़ी चेती मैला पहला कब की माई बाप कब चेरा किदू था वो हम आए अगन बिंब जा

केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे। तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा लेके तकड़ी को।

तरे अंश न चाहया जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई दे। गौड़ी बैरा गुण मेला पहला, हरणी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ। गुर प्रसादी मेरा सौ मिले, वार वार हो जाओ जी।

अंत न पारा वार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाने कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, गुर

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए गुर ते सांत बसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाज गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा सोथाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारे जापे सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए हर गुण गावे बैस सुखाए रहाओ। जलो एह जेवा दूजे पाए हर रस न चाखे फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए गुर कृपा ते सत समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द।

गावत रहे जिस सतगुरु पावे मन सन राता नाम सुहावे रहाओ इक दावे इक भगत करे नाम न पावे बिन असनेह सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राख्या सदा उद्धार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच तपे बहुत दुख पावे नचिए टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वछल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप होए मेरा प्रभु साचा सब विद जाने नानक बसे नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे देव डिहाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित धारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाद सादे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख एव मन लया सवार हो मैं विचों तजे विकार जो तुर

नानक गुरमुख नाम पछाने गौरी ग्वारे री महला की जा होमे विच सब जग बौराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अंजन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हों मैं मार गुर शब्द पछाता।

हर कृपा ते हर वसै मन आए। राम राम करत्या सुख शांत शरीर, अंतर वसै न लागे जंपीर, आपे साहिब आप वजीर, नानक सेव सदा।

जित सेवे दरगे पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

संगत बनाई। जय सतगुरु सहजे हर गुण गाई, जय सतगुरु तहां हौ मैं शब्द जलाई। गुरुमुख सेवा महली थाऊ पाए, गुरुमुख अंतर हर नाम वसाए। गुरुमुख भगत हर नाम समाए,

साई तहां गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई, आपे सुतिया देह जगाई, किसकी कीमत किने न होई, कह कह कथन कहे सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मनमुख सूता माया मोह प्यार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार, से जन जागे जिन नाम प्यार, सहजे जागे समय न कोए, पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ, असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूझे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे, इस युग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप करे सगले कुल उधारा, इस कल युग में कर्म कर्म न कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना को मुक्त न होई, गौड़ी महला तीजा, ग्वारे री सच्चा अमर सच्चा पातशाह, मन साचे राते हर वे परवाहो, सच्चे मैल सच नाम समाहो, सुन मन मेरे शब्द विचार, राम जपो पर जल उतरो पार रहाओ, करमे आवे परमे जाए, ए जग जन्मिया दूजे पाए, मन मुख न चेते आवे जाए, आप पुला के प्रत आप पुलाया, इहो जियो विडानी चाकरी लाया, मां दुख खटे बिरथा जन्म गवाया, कृपा कर सतगुरु मिलाए, एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए, नानक नाम जपे नौ नौ निद पाए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मनपति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई, गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाने मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज समावे सोए, दूजे पाए न सेवे आ जाए, हौ मैं माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोह आजमाए, मन मुख अंधा आवे जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंजन भगत गुर शब्दी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, नानक नाम समावे सोए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर कोट न होई, ऐसे सवा सुख दर शोभा होई, ए मन मेरे परम न कीजे, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजे रहाओ, सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे उदारे, नाम रते पौजल उतरे पारे, सतगुर सेवे सदा मन दासा, हो मैं मार कमल परगासा, अनहद वाजे निज करवासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी, हम दिन जपें हर

हर रस कोग गुरमुख प्राणी नाम हर चाहे जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा से किन विरले चख दीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागन जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है क्या धरती मदे पानी नाही जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया बिन पगा बरसत फिराही।

रूप सदा है तेरे, तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे से, जा पाया ता फूले नाही। जा का कार्य सोई पर जाने, जे गुर के शब्द समाही। तेरा शब्द तू है।

हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति हर हर मन से आया सज्जन हर प्रभ पाया हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे।

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिनको

तेजन नानक नाम समाई, तेजन नानक नाम समाई, दौड़ी ग्वारे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए, ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे, रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा, नरपत प्रीत माया देव पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे, गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी, रहाओ चचवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिबसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, और सब प्रीत माया मोकाचा, बिनस जाए कूड़ा कच पाचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई, राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग तूर जिना मुख लाई, तिन कूर त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल पद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रब रया बनवारी, हर आपे तप

तन छाट दे पर भोग बिलासा त्यो हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुस्सैया जन की उपमा तुझे वडैया रहाओ मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस नीचे मुख लगे जा हर गुण गावे हर जन परवार सवार है इक्की कुली सब जगत छड़ावे जो किछ किया सो हर किया हर की वड्याई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत पंडार लहाएगा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई जन नानक हर का

मेरा पुत की खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा।

सो जंतर है जो दासन दास जन नानक नाम से आया गुरुमुख परगास। गौड़ी बैरागन महला चौथा। नित दिन सरात लालच करे पर मैं परमाया वेगार सिरे वेगारिया सिर पार उठाया। जो गुर की जन सेवा करे सो कर कह कम हर लाया। मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कह कम लाए। नित हर गुण गावे हर नाम समाये रहाओ। नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया। कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया। तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया। नित सौदा सूद की चै बहु पात कर माया कै ताई। जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाए। जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाए। जितनी भूख अन रस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख न लागे। गौड़ी बैरागन महला चौथा। हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हों कुर्बानी गुर आपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। मत निर्गुण हम मैले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं बहु बार बार हर

ते सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदप मेरा।

हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुबत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस लाया, हर प्रभ चित न आवई क्यों छूटा मेरे हर राया, मेरे राम इन नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा, बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ, किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा, क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम जपया ना तेरा, हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन तो पानी अन्न थाना।

जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागन महला चौथा। जो जननी सुत जन पालकी राखे नगर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभु।

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली। जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी। कोई जानो मास काकी कै किछ हाथ है, सब वसगत है

रामरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदर हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जग के अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरे सिर वेचियो गुर कह मोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंधिन हर गुण गावे मिर सतगुर गुर वे चोली गौरी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विदाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तो मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड अवर न दाते जन नानक नाम ले ता जीवे हर जपिए हर के।

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने। राव जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोए पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम सम

जन नानक गुर के लाले बोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया पूरे गुर के आगे सत गुरदाते नाम दिड़ाया मुख मस्तक पाग सब आगे राम गुरमत हर लिव लागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ तट कट रमैया रमत राम राये गुर शब्द गुरु लिव लागे हऊ मन तन देवो काट गुरु को मेरा प्रम को गुरु बचनी पागे अंधियारे दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो कर वस्त लही मन जागे साकत बदक माया तारी तिन जम जोहन लागे उन सतगुर आगे शीस ना बेचिया ओए आवे जाए अपागे हमरा बिनो सुनो प्रभु ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचो सतगुर आगे।

राम गुर के बचन हर पाया रहाओ, मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब

चाया हम अपराध पाप भोकी ने कर दुष्टी चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जुहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस

जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। रागौड़ी माज महला चौथा, गुरुमुख जिंदु जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोष पिता कर गुर पुरख अजन्मा, वड पागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतना सदा निर्वाणी जियो। वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा लैलाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा। सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया। हर अमृत उठड़ा

मन करी हाजियो, मिल संत जना रंग माने रलिया जियो, गुरु दीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो, हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा।

मन अनदिन अनग्रह जियो हर पायरा वड पा गई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे वेखे हर आपे कारे लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इक ना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौरी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदासिया।

जियो आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा हर आप खेले बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाएगा मेरे गोविंदा एक नगन फिरे नग नंगी जियो आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा हर दान देवे सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंगे हर चंगी जियो हर आपे भगत कराएगा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रब रहा नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहा पर पूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखे आप अधूरी जियो हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा हर आप वजाए त्यों वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर सबदी हर प्रभ गाजे जियो आपे शरण पवाएगा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिदका जय जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो हर मिलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर सबदी पाये हर प्रीतम राओ जियो वड पागी जप नाओ जियो मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम

वाजियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मंगवाजियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवाजियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम

इन विद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाये हर राम सहाई। रहाओ कुशल नागरे मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हों मैं के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किच करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हों मैं मार समाया। इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाये हर राम सहाय। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, क्यों प्रमिये प्रम किसका होई, जा जल थल मैयल रविया सोई। गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई, जिस राखे आप राम दयारा।

साफ कर उपाया लख चौरासी जोन परमाया साध संग पयो जन्म परापत कर सेवा पद हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभिमान जीवत मरहे दर्दे पर।

कहो नानक हर हर गुण गाए, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। करम पूम में बोहो नाम, पूरन होए तुम्हारा काम, फल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास, हर हर नाम अंतर उर्धा।

उपाव छोट गहो तिसकी ओट, निमख माहे होवे तेरी छोट। सदा निकट कर तिसनो जान, प्रभ की आज्ञा सत

बिनासी गुर के बचन कटी जम फांसी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आके जाने, क्या को कहे क्या आक वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

पंजवां अनिक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणत आगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभ की दरगे शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला, रहाओ जो गोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अगन शीत का ला।

कृपा जिस आप दीवाने, हर हर नाम जा के हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना, अनक रूप देख नहीं।

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस पोग।

तुद पावे ता सतगुरु मया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग।

निमख न कृष्णा तेरी लाखे, हर रास्ता तू चाखे साद, चाखत होए रहे विस्माद। अमृत रसना पियो प्यारी, ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतहु जाइए, साध संगत वड़ पा।

हर गुण दावत रसन अमौली बनस्पत मौली फल फूल के दे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुरु पे हैं सहाय गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर तन साजी बार इसी मदे बस अपार इसी पीतर सुनियत साओ कवन बपारी जाका उहां विसाओ नाम रतन को व्योहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय पाए लगो तज

व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, तहु नानक जे तू

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तने जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सु

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

पैर अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी जब के सुनिया हर जस्तानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राख।

है पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुर पूरे ते मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वे साहो गुरपूरे रस दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता।

कर कृपा प्रभ आप मिलाया, बाँ पकड़ लीनो कर अपना, हर हर कथा सदा जप जपना, मंत्र तंत्र औखद पुने चार, हर हर नाम जी प्राण आधार, साचा तन पायो हर रंग, दुतर करे साध के संग, सुख बैसो संत सज्जन परवार, हर तन खटियो जाका नहीं सुमार, जिसे प्राप्त किस गुरदे, नानक बिरथा कोई नहे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, हस्त पुनीत हो

माया मगन ना कछुए मोह उदरे आप करे संसार राम नाम जप के संकार आप कमाओ अमरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहो निदान सोई पुरख जपे भगवान आप तैर हर हर गुण गाओ कहो नानक हो तिस

विचर आ गया तिचर पोगे पोग जल न पाये राम स्नेह तीर्थ संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संयम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी द्वारे री महला पंजवा हम तनवंत

भरपूर सतगुरु अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तारे रहाओ। दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर

जा को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जाता तया दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जाता सब

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरले जाना, सहज

तह सहज अथारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं दिया सो कर गुरु नानक तो दिया। गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा।

जिस कर कृपा सतगुरु मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहा दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलक नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका।

कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूरन देखाया। गौड़ी महला पंजवा दुलभ दे पाई वड पागी।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम हृदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

0: कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पए जिन से परम खाट। गौरी महला पंजवा,
1: वडे वडे जोगी से लोग,
0: इनको व्यापे चिंता रोग। कौन वडा माया वडे आई, सो वडा जिन राम लिवलाई। रहाओ पूमिया पूम ऊपर निकलु जै, छोड़ चले कृष्णा नहीं बुझे। कहो नानक ये कथा।

राज योग हर कै मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अगकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस केते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल परगासे हर सिमरत त्रास सब नासे सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जाके हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा। एक सो जाका मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुरपूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा। नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा। संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हार नानक मन।

चरण ठाकुर के मार्ग कहावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का

आओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे इस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख।

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुरपूरा।

छोरे मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तै दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल रिद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंतन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपक बुझाई रहाओ। तब अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए, पाते कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण का साथ, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन

सगल रोग का दिल सिया खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आस पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कारस, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक पला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द राख मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए। मारे राखे को सोए, रहाओ गुरु के चरण हृदय उर्धार। अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरख सो लाए ध्यान। ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया। मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसे मन आए।

जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, तै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना, रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर मह व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया, राख ले प्रभु।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा से अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास, गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे छोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही

अपनी दात नानक नाम जपे दिन रात दौड़ी महला पंजवा तू समरथ तू है मेरा स्वामी।

जो कुछ वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्स पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाये, कर कृपा प्रभ दिनों सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसै मन आए।

पूरे सतगुरु मिलन सारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुरु ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया।

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर भेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवां। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस

हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विदाता रहाओ, संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग ना उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रबंधन छोटे चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रे जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता का।

जो है दूत कर्म राये किस त्यों बेमुख जिन जियो पिल जीना कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस तरह सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो विसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सागर पार ब्रह्म तेरी।

औषध मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार तज सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संजम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोह खोए गुर परम तेस नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण कमल स्यो लागी प्रीत आम सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभु ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभु सोए रहाओ महातपत सागर संसार प्रभु खिन में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए उकत स्यान किसके कछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवा थाती पाई हर को नाम विचर संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार पाव सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोए सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगे पाये मान गौड़ी महला पंजवा जल थल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जाके सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आशा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे देहात गौरी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो भिक संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते कै पंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जाके हृदय बसियो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बार राख्यो हृदय समाल कर आए गोविंद ले नाल हर हर नाम संतन कै संग मंतन राता राम कै रंग रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किल विच सब हिरिया शोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत चरण कमल हृदय में जाप नानक पेक जीवे प्रताप गौड़ी महला पंजवा तन एहो थान गोविंद गुण गाए कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही
कोट आनंद जय हर गुण गाही, हर जिसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ननेरे, सोवड पागी निंचल खान, जह जपिय प्रभ केवल नाम, जह जाइए ते नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा। जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया पर

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान। काट काट

साज तूर कर सुध मंजाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल न उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आठ पैर से आइये गोपाल। नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा। सांत पाई गुरु गोविंद पाई, पाप पाप दिन से मेरे पाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पे कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार।

आगे आप तू थान वस जाते आप तेरे मन हर को जाते पप प्रवान सत निशान जाको आप करे फुरमान आपके दाता आप प्रतपाल नित नित नानक राम नाम समाल गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल हृदय वसिया सदा गोपाल राम रवत सद ही सुख पाया मया करी पूरन हर राया रहाओ कहो ना

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए पद

का हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंग निजागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते परम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभु मेरा बिसरत नाही, गौरी मैला पन्नवा, उद्दम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पए आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कार्य आए, एकत साध संग गई बलाए, रहाओ नेत्र पुनीत ते खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस।

अखिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन चीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सो मन माने, अदाज बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे, गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोविंद।

नित प्रतिपारे बाप जैसे माई, प्रभु की शरण उभरे सब कोए, करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निरपोगाई। गौड़ी महला पंजवा, उज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन नीत।

है कोई राम प्यारो गावे, सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सन कादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर संत में।

तो संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोह सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिटियो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण दहो पूरन राम रतन हियरे संग रात राव प्रम की कुई तृष्णा रस पंकज अत तीक्षण।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मोह सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस बिन पंच दुहेले ओ बस अगोचर।

खेद करें और बहुत संतावे हैं। आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोहतिन के तीरज पाया संति मंत दियो मोह निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महादुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा।

रोजाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राख है तैसे रहना क्या हो करे बिचारा।

जो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटे नाहे रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरहे दिखायो तो शरण करयो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दा।

कदम सुहेले सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले वरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी जन मरण को।

जन पार ब्रह्म रंग राते सूख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्स प्यासा उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आशा।

अरे इकतरा एक किसके वस्तीये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी ये परम जराए चराई विपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सुख शोकी ने पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय कहो नाही ता आसन बांधे हो सिंगी अनहत बानी पत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वद पागी पेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

श्रृंगार पूरन होई मन की आशा गुर के त्योहार रंगा नाम खजाना भगति पाया मन तन तृप्त।

सेवक संग तुम प्रवराते, पोत पोत पगतन संग जोरी, प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी, राम संत में भेद किछ नाही, एक जन कई मह लाख करोरी, जा कहिय प्रगट प्रभु हुआ, हम दिन कीर्तन रसन रमोरी। तुम समरथ अपार अत ऊंचे, सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी, नानक को प्रभु की जय कृपा, उन संतन के संग।

सर्ब उजियारा गुरजान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन सत्या अनकह ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुख है ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न

सुखदाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्र निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

मेरे हर भगत बिना जीत जन्म ए रतन अमोलक साध संगत जप इक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिक बिखिया पसरी अतकनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर के तत परम पो खोया।

अमित जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच बिछा दिया, गुर कृपा के दल सा दिया, बख्शीश बजो मिल एक ना।

लख 84 जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध स्यान पहुँ में रही हर साध शरण नानक गही। गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याये रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है जा को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अगन के नानक को प्रभु।

तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया, हर विश्राम निध पाया सो

साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर राव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नवनिध सिद्ध जो जाने हर पद तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग मानिया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

पान सब का खाना रहाओ ऐसे है रे खत्म हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभु के गुण।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग थे कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपे जो दिसे जो तरवर की छाए तन मेरा संपे सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवन हारा बिसरे ठाकुर चिन्ह में होत पराए।

हरिया रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बल हरिया रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाये जो होए दयाल सतगुर अपना ताए मत बुद पाये मेरे मन नाम ले जम बनते छूटे सर्व सुखा सुख पाये शेर स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आई है।

अनित बंधन माया परमत परमाया गुंडित नहीं पाया मन विषय ही मैं लुजी है। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

आवै दुख पंथ पहान रहाओ सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस है काल कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल होम जग तीरथ किए बिच हो में बदे विकार नरक सुरग दोए पुंचना होए बहुर बहुर।

0: मैं कैसो कह पुकार नाम कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार
1: राग दौड़ी माल।

किया। सतगुर सब समाया रहाओ, लाठी भूख त्रिशन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी, त्रिपत अधाए रहे रिद अंत।

डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुरु दिया तोट नहीं रे मुके अचरज एक सुनो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाए परदा ठाकुर जो पेट्यो तो बिसरी तात पर आई कहो ना जाई एहो अचंबो सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पे बिगाता गुर निधान हृदय ले राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरणी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरणी रहाओ सास सिमरत वेद बिचारे मां पुरखन यूं कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख न किन्हू लया तीन पवन की लखनी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां स्थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बिलास करत मनमोहन पूरन होत न कामा जलतो जलतो कभू न बूझत सगल बिरसे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता यह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की

किछ इन्हें कमानो जब तब कछू न सादा दैदिस ले इहो मन दौरायो कवन कर्म कर बांदा मन तन तन भूम का ठाकुर हों इसका इहो मेरा परम मोह कछू जस नाही ए पैखर पे पैरा तब इहो कहां कमावन परया जब इहो कछू ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किछ आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन

हर दिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संजम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ बरत नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चलन और है पाई उहां कामना आया। तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सगली चाक चखाइए। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर से वो अर नाम ते आवो त्यागो मनोगुमानी। गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रही है रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा पूरन खत्म हमारे। करो कृपा सर्व के दाते एक रूप ले।

गुरमन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इो मन बिद संदा जियो, पेख दर्शन

दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कही है जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपै वट।

माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिखड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा इकस दो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर्श होंदे आनंद करें दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी।

आओ जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप तत्ती वाव न लग गई सतगुर रखे आप गुर नारायण दया गुर गुर सच्चा सृजन हार गुर तुठे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदियां हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारिय जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे जीविय पव जल पई है पार मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया

सर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साधका तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थ्यो कर हर के चरण निदान नानक जाचक।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एन सिपागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर सोगते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कथन है किन्हों गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाए गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एनिस मगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों ए विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो चूठो त्यों जग देख ताक उठतावे फुगत मुक्त का

धुन गाई, जन नानक हर पै दयाला तो सब विद बन आई। गौड़ी महला नावा साधो गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काए गवाओ। राव पतित पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो। तज अभिमान मोह माया पुन, भजन राम चित लावो। नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की, बिरथा जन्म सिरावे। माया मोह महा संकट बन, तास्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ, तास्यों निहो न लावे। नानक मुक्त ताहि तुम मानो, जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोग मोह माया ममता कुन, औ बिकियन की सेवा। हरख सोग परसे जे नाहिन, सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब, क्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन, ते तुम जानो ज्ञानी। नानक मुक्त ताहे तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तैं बौरा, एनक औध कटे नहीं जाने। पयो लोग संग होरा, रहाओ जो पन ते अपनो कर मान्यो। अर सुंदर गृह नारी, इनमें कट से रो रे नाहिन, देखो सोच बिचारी। रसन जन्म अपनो ते हारियो, गोविंद दत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यों, बिरसा औध सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। और सगल जग माया मुहिया, निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन। शरण ताहे तुम पर रे, रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत। ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को। सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस दे बौर ने पावे। कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गा।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिकमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ इक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नगर पई दिख ठाक रहाया उलट पई जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा दृष्ट पई सुख आता।

चीत नानक हर पज नीता नीत गौरी ग्वारे री महला पहला ना मन मरे ना कारज होए मन वस दूता दुर्मत दोए मन माने गुरते इक होए निर्गुण राम गुणे वस होए आत निवार बिचारे सोए रहाओ मन पूलो बहुत चिते विकार मन पूलो सिर आवे पार मन माने हर एक अंकार मन पूलो माया कर जाए काम विरुदो रह न खाए हर पज प्राणी रसन रसाए जैवर हैवर कंचन सुतनारी बहुत चिंता पिड़ चाले हारी जुए खेलन काची सारी संपो संची पै विकार हर शोक उबे दरबार सुख सहजे जप हृदय मुरार नजर करे ता मेल मिलाए गुण संग्रह औगुण शब्द जलाए गुरुमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूर माया चितवास गुरुमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास मन चंचल कावत फुन तावे साचे सूचे मैल न पावे नानक गुरुमुख हर गुण गावे गौरी द्वारे री महला पहला होमे करतिया नह सुखोए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बिगूचे पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट जिसे ताके

दुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार पर होए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए। तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए। तन में साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज खाओ, प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझे नाओ। माया मोह सर्व जंजाला, मन मुख कुचील कुचित जिकराला, सतगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला। गुरमुख बूझे एक लिलाए, निज कर वासे साज समाए, जमन मरना ठाक रहाए, पूरे गुर के ए मत पाए। कथनी कथो ना आवे और, गुर कुछ देखिया ना ही दर होर, दुख सुख पाने तिसे रजाए, नानक नीच कह लिगलाए। गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अंक

तरण गगन ने देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवें खसम एको जान, गुर के शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे सा साचा, मुक्त पेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच पुरधार है, रहाओ जिसके अंतर साच वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैरच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौरी महला पहला, हिमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूप बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपो जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरे पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो नाओ, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आस निराशा, काम क्रोध बिक भूख पे आता, नानक बिरले मिले उदासा, गौरी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस सारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तै तै साचा, दिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हमता के दास, गौड़ी मेला पहला, ब्रह्म में गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्व बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्व निवारे, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार असारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरणाक्ष दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका शीश समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, शैत बाहो मद कीट में खासा, हरणाक्ष ले नखो विदाता, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमुन संगारे,
रसत बीज काल नेम बिदारे, दैत संगार संत निस्तारे। आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दैत संगार।

जन को दुख पचे दुख होई, जन में जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, एक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई, राम ना छीनिया अपनी पत कोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म

पाप पतंबर पहर हटावो, दिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, दिन जगदीश कहां सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, दिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी, दिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली।

सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाय मिले सच साचे सचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल सोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अगन जगत पर जा रहे, सो उबरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा रात तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत न कभू होई, पर पर पोथी सिमरत पाठा, देख पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्ताता, गौड़ी मैला पहला, हट कर मरे ना देखे पावे, वेश करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के

किसको वाहो वाहो जी शब्द सुनावे, किसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे, वाहो वाहो किसको जिसका इहो जियो, गुर सब जी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहूं तेरी शरणाए, नानक नाम रते पत पाए, कौड़ी मैला पहला हूं मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरुमुख भगत बिरले मन मानिया, हूं करत नहीं सच पाई है, हूं मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हूं मैं कर राजे बहुत आवे, हूं मैं खपे जन्म मर आवे, हूं मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्याग पंथ संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो कह कर तारी लावे, हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेसी है तेसी क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हों में बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी मैला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यो राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकद

काल ना जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साथ मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकुम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैठे काल न जो है, मन मुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैठ सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साथ सहज हर बोले, पीवे अमृत तप विरोले, सतगुरु देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सत जोत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी, मन से मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साथ महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साथ संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सत होई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साथ नाम मलख होई, गौरी महला पहला, राम नाम चितरा पैजा का, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, जिनका दर्द परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हों मैं मारे गुर शब्दे पाए, अर्ग उर्द की संग क्यों जाने, गुरुमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

की सेवा करें, ठाकुर नहीं दीसे, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दीसे। इस पद जो असाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परमे पूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव, सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत शोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला कीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख तोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

आई राम पढ़ो मन करो विचार गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर के शब्द सच लिवलाए हो मैं मैला यो संसारा नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा बिन गुर पेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हो मैं मारे गुर के शब्द पंच संगारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोह नट बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी अंतर तिसना फिरे अंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत परम पुलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी ग्रही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मिलाया अंदिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पढ़ वाद वखाणे सिर मारे जमकाला तत नाचीने बन्ने पंड पराला मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिखिया राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हो मैं दूजा शब्द जलावे नामे राते हर गुण गावे माया दासी भगता की कार कमावे चरणी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुने से तनवंत दिसे जुग माही तिनको सब निवे अंदिन पूज कराही सहजे गुण रवे साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया।

परम पुनाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन

बंधन ना टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वर्ताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साथ रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरुमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरुमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंदिन हृदय जपो जगदीसा, गुरुमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरुमुख गावे सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरुमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरुमुख मन वेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरुमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंदिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरुमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई है गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पौ जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई, हौं मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मनिए सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पै पचन तिहो जग परम पुलाया मोट गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हों मैं मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलने सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू आपे बख्श मिले।

पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लह जाए मन कर हला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन कर हला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगे पहनाया हर आप लिया गल लाए मन कर हला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा

मन करहला गुरु गोविंद समाले रहाओ। मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल। गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाले। सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वट पादिया हर एक नजर निहाल। आप छाए छुट्टिये सतगुर चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल। गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दास करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल। हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बड़ पागिया तू ज्ञान रतन समाल। गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जमकाल। अंतर निधान मन करहले प्रम पवै बार पाल। गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल। हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल। वड पागी गुर

जब हो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए ताते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया।

हर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना

पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचार जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर ना छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन

जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यों संग निवारे है। दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए जाको दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है। जेता सुनना तेता नाम। जेता पेखन तेता ध्यान। सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जाए सोहोए। सहज बैराग सहजे ही हसना सहजे चूप सहजे ही जपना सहजे

जा के सहज मन पयानंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको पर्यो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच कर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु ना तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अरतारे रवसस पवन पावक नीरारे दिनस रैन बर्त अरपेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तें पौ परमा सोग ना चिंता।

जो इस मारे तिसका दुख जाए। ऐसा कोए जे दुबदा मार दवावे, इसे मार राज जोग कमावे। रहाओ जो इस मारे

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाय न परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल किरपा निज, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुरदुबदा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी, गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुरे ता सबको मीत, हर स्यों जुरे ता नहीं चल चीत, हर स्यों जुरे ना व्यापे काड़ा, हर स्यों जुरे ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर, रहाओ वडे वडे जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुने, तिसके संग खिन में उदरे, कोट मजन जा

मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जा के चाकर को नहीं दान जा के चाकर को नहीं बान जा के दफ्तर पूछे न लेखा ताकि चाकरी करो विशेखा जा के ऊन नाही काहू बात एक है आप अनेक है पात जा की दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे करता की काल ना को चतुर नाही को मूड़ा ना को हीन नाही को सूरा जित को लाया।

बोलें कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेखियो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाव निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा, गुर के बचन जागिया।

पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया से ही होए भगत जिना कृपारिया हौ वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया मैं तक्की और संता लेहो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया चौह दिस जपिए नाउ सूख सवारिया मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया गुर काढ़ियो पूजा प्रसार मोह कुपारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया मैं पायो सर्व निदान अथक कथारिया हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया जन नानक लगा रतन अमोल अप

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत तरयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौं संचो हौं खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौं सूरा प्रधान हौं, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं विसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुरख

बिन करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम पिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन।

हम कर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिर तन

हुन ना प्रभु जियो एक लड़ी बनवाहे क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए नानक सा तन।

सबदे सुहावे ता पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हठ निग्रह बेबाने नानक सच कर शब्द सिंजापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अंदिनो जिस बाज वखर कोई न सूजे नाम लेवो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम।

हा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे रह न साके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए गुर परम चुकाए यो मिलिए माए तासा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे नानक कामन हर वर पाए।

सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर वर

अन ना पानी, पानी अन ना पावे मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एहो शरीर पूर कुसत परिया, गल काए पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजै, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे प्यारी, विच्चों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर के पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उधारे, अंतर उधारे मिलिए प्यारे, अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतमत प्यारे, कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे हों मैं मारे, गुरमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुनिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुरु बूझ बुझाई, सदा आनंद रहे दिन राती, अंदिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहता जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यो मरिए, खिन में राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी, मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, हों मैं पाप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाणे, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसे कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा, गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाई है, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए, आप सराय करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहार।

प्रसाद गवाए, सदा हर रस पाए, जा हर पाए, रसना सबक सुहाए, नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति।

मन मुख मुकुट गवार तेरा जियो, शब्द मन ना वसाए, माया का परम अंग तेरा जियो, हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए, हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चित लाए, जिसनो हर जियो कृपा करे, सदा हर के गुण गाए, नानक नाम

एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे, मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे, चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे, गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है, फिर दोष नाही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे, बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे, हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो।

रहे। जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहाँ तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली। माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया, तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज।

तेन दाना जमकाल तिन को लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर सो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निचल पूरन पुरुष भगवाना मोहन तू सुफल फलिया।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवा श्लोक। पतित असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार, नानक राम नाम जप पाव को।

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आरा दिए जम पंथ बिखरा अगन सागर निमक सिमरत सा दिए कलमले दहता शुद्ध करता दिन सरण आरा दो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पदक वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन

अंत अगम अपारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख बिदारो रोग सोग सब दोख बिन से जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल धारी गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जा के प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत ना

संते मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मनते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पे नरक निवारे पुनीत कर किस जनते सुन सखिए ए पली बेनंती ए हो मतांत पकाये सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाये कल कलेश मिटे क्रम नासे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम त्या

ये मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा फिर मिलिया, प्रमुख होयो सांस सह स्वामी, परगास तया कौल खिलिया, वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन, गुरुदेव बंधक सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्रा। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा। गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग, नानक एक और रव रहा दूसर हुआ न होग। पौड़ी ओम साध सतगुर नमस्कार, आद मद अंत निरंकार। आपे सुन आपे सुख आसन, आपे सुनत आप ही जासन। आपन आपे उपायो, आपे बाप आप ही मायो। आपे सुखम आपे।

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत परोवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दिष्टारं सगल पाप कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहू को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर नाम विहूने नानका होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेउ जेह रुच या मनुआ तन नहीं बांचे सुरग नाचे अत प्रय प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कही है दियो प्रव नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनिक पेक

आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ताके ज्ञानी तत् गुरुमुख विचारी नानक जाको कृपाधारी श्लोक

आया, जन्मत मोयो मोनी माया। गर्भ कुंट में उर्ग तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते। उर्ज परे जो छोड़ छदाना, देवन हार मने बिसराना। तारो कृपा जिसे गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आ

ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो बिथम ए माया, कर कृपा सतसंग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा। श्लोक रात रहे बनता विनोद कुसुम रंग बिख सोर नानक के सरनी परो बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जय रचो कहते बंधन पाहे जे विद कतहु ना छूटी है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा।

या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो।

आप अवर नहीं हो, हो अनहार होत सद आया, हो आपका अंत ना काहू पाया। कीत हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाउ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तें जपना। श्लोक आत्म रस जे

गम्य जास रसन हर हर जस पन्य आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो दुर्मत दो किसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रह एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुरपुरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए ताको माँ

पौड़ी थका खूना कछ नहीं तिस समरथ के पाहे जो देना सो दे रहे हो पावे तहते जाए खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनद स्यो जाको होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद न दुख न दानते।

लोग आस अनित गुरुमुख मिटा नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का विलम न करहो मीत न बारक न जोगने न वृद्धि कच बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग, नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र देव सब आन न कस्तो कोए, आप जुगा दी हूं।

ने चरना काल काल अनेक पछतावे बिन हर भगत कहां स्थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुरु जा को दिया श्लोक काले सब दिवस।

काल के जो साकत प्रभु कीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहु को आए कर कृपा जी आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट पे नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवल बिग सांत

सभागा चार कुंट दह दुष्क्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको संत।

पौड़ी जजा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिरता साध

ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते कीचत पिन अंधकूप ते तेह कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न ना कह।

पवन बिन नामे सुख नाहे, तलहे जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके, नानक पाप बिना से कद के। श्लोक ठाक ना होती तिन्हों दर, जे हो वो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन।

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान है डेरा ने चल सच।

मनुआ जी तै हर मिले ते सूरतन वेश। ना को जाने आपनो एक टेक आधार, रेण दिन सिमरत रह सो प्रभ पुरुष अपार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक प्रम को काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी। तत्ता कांस्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राय, फल पावे मन बांचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले गृह जोबन ने राज, संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक। था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी। थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव, अनिक बंच

नानक नाम ते आईए कारज आवै रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटै संत संग होए बास तुरते।

जा के मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पौड़ी। पप्पा परमित पार न पाया, पथित पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रो मो मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई। पाँच साओ

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

मम्मा जाहू मरम पछाना, पेटत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत।

याहू तरन तारन समराथा राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जवनाई नानक ते मत प्रगट।

पावे खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानप सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाई। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख ना।

पौड़ी। हेरो काट काट सगल के पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटते होए आनंद ते हौ नाही ते आप, हटे दुख जन्म मरण संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संत संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताए न जानत तत् लाहा माया कारने दैव स्टूडन जाए देवन हार दार प्रभ निमख न मने बसाए लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हो संग बिहाए खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे पा।

खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए मुख।

हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जा कै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नम है, जुगाद गुर ए नम है, सतगुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंगर एक है, नाम जप अगणित अनेक है। वेद पुराण सिमरत सुदाखर, कीने राम नाम इकाखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी नावे। ताकि एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोय उदारो।

प्रभकै सिमरन दूस जन नसै, प्रभकै सिमरन काल पर हरे, प्रभकै सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभकै सिमरन अन दिन जागे, प्रभकै सिमरन पौ न व्यापे, प्रभकै सिमरन दुख न संतापे, प्रभकै सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तक पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगे मानी, प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुरु पाए, प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहि सुनाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन प्रवान, प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरे से परोपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सब बलिहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कभो न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय शुद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पारा श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय मां प्यान दूत दम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण कर्त नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नाम पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार के हो जाति के ला, ते हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ते पार कराही, अनेक बिगन जह आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कभू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंख तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय महा प्याम सत बहु काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ त्रिखानन तुझ आकर खै, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरकर नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर दस पर संत दिन रात, हर हर औसत साध समात। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भूत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत तब करे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन सो बापाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत पछवाए वियोग। जन वाता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप सब दीना। हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अगर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते। आठ पैर जन हर हर जपे, हर का पगत प्रकट नहीं छपे। हर की पगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता। नाम की महिमा संत हृदय वसे, संत प्रताप दीर्घ सब नसे। संत का संग वड भागी पाये, संत की सेवा नाम ध्याये। नाम तुल कछ अगर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व तंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जापता ज्ञान सब ज्ञान, खत शास्त्र सिमृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म कर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनेक प्रकार की ये बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पासी। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव, महा उदास कपि सरथीव। अगन माए हो मत प्राण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अच्छादन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हो मैं मेल न जावे। हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे। मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्व गुमान न मन ते हुटे। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन से कभू न भिख्या करे। जल तो वह बहु दे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची वीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे। पेट अनेक अगर नहीं बुझे, कोट उपाव दर गहनी सिजे। छूटत नाही ऊप बयाल, मोह व्यापे माया जाल। अगर करतूत सगली जम डाने, गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सब गावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो मैं चोरे। जे को जन्म मरण से डरे, सात जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्श पे आशा, नानक ता कह।

कर जामे। अपनी गत मिट जानो आपे, आपन संग आप प्रवराते। तुमरी उस्तक तुमते होए, नानक अवर ना जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग जुर्मत मल।

कुमार है, बाल व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोवन पोधन सुख सूद, दीर्घ पया ऊपर साथ सैन, मुख प्याओ बैठ को देन, त्यो निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श लियो तो नानक सीजे, जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संग हसे, जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावत अमूला, जे प्रसाद पोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंग व्यापे, नानक काज लेहो प्रव्यापे, आद अंत जो राखन हार, तिस्यो प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नवनिध पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे।

संग संगाई किस तरह चंदन लेप उतारे धोए दर्द प्रीत पसंद संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काट लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेट अंतर मलमाया छप सुनाए कछ करे छिपाया बाहर ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुहा जल पाथर कैसे करे अथाहा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लो ओर निभावे कहां बुझारत बूझे डोरा निष्कैय तो समझे पोरा कहां विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरभंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई तासो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास।

जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख काहू मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारख दाम। तन तन के जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कह बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर पेख न काहू पीन। और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक कुंजन चरण पर आता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप तर्क निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रहते, सब कछ जाने आत्म की रहते।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ

तब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन तिस प्रभु को कभू ना बिसारी।

बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो।

अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस बुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथु दावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग

साध संग विचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग कट कट बीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संग।

बड़ पागी पाये, ब्रह्म ज्ञानी को बड़ बल जाये। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे।

नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक। उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

कृपाल आप जरे अवरे नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पहे तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नर्तन नाम दियावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश पू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र, कई

जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड।

तिन होवत आत्म परदास। कई कोट तक के बेटे सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे अमर पहे सत सद ही जीवे। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे।

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अप

प्रभ पावे ता पतित उधार है, आप करे आपन विचार है। दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिजसे अंतर जामी। जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरना आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, जो तिस पावे सोई करावे। किसके हाथ होए ता सब किसले, जो तिस पावे सोई करे। अनजानत बिख्या में रखे, जे जानत आपन आप बचे। परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

गुरु प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे।

नानक दर्द गले अष्टपदी। जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

जाए। प्रब कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लखो उस्तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे, न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे प्राप्त होए। करण

रचया समाए आप उपदेश है समझे आपे रचया सब के साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसके तिन कहो किस होए थाम सनंतर एक कैसोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने दिले चीना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट

अष्टपदी। संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे। संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए। संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए। संत दुखी कथाओं को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे। संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खिंच करना पाई। संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा।

जिस गुर पर साल तू तय हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदर को था मैं थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। ज्यो पाखान नाल चढ़त रह, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। इन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिललाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख कर जीवन हार, अवर त्याग तू किसे चितार। जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिरे अजान। कौन बख्त आई तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पथ सेती कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान लो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाभ के संतन संचाल, अवर त्याग दिखिया जंजाल। तन तन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगे सोए। क्यों व्यापार बिरला व्यापार है, नानक का कह सब बलिहार है। चरण साध के तोय पियो, अरब साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड पागी पाइए, साध संहर कीर्तन गाइए। अनेक विघन पे साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। ओट गई संतें दर आया, सर्व सुख नानक ने पाया। मृतक को जीवालनहार, पूखे को देवत आधार। सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए। सब किस किस का ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबके ऊंच निर्मले करनी। पर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जा के मन गुर की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रवचीत। भगत भगत सुनिए ते लोए, जा के हृदय को होए। सच करनी सचा की रहत, सच हृदय सतमुख कैत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न। तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाश।

पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद। साफ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एवं नराओ, मनसा पूरन सन्ना जोग जो कर पाया सोई होग। हरन परन जा का नेत्र फोर किसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सज्जा कै सब थोक सुनिए कर पाके, राज में राज जोग में जोगी पत में पति सरगस्त में भोगी। चाहे चाहे पगते सुख पाया नानक किस पुरुख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे, पिता के जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से, त्यों गुण में जाको भरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जन आवे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना तेख करे एक रंग, नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे पूर ओ पूरन सब ठाए, नाना विद कर दंत बनाई अपनी कीमत आपे पाए। सब कब तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगाश पताल नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष सब माए समानी। सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त, सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए किसे सब पली। सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नाम गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह रे प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोए नाम जपता की गत होए। आप सत की आसव सत आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्टि हो करने हार और न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया किस आया स्वाद। प्रभ के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख का तनहार जाके संग करे संसार। जन का सेवक सो वड़ पागी जन के संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भे सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत त्यावन हार। आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता। बुझन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया। जहाँ कह हृदय विश्वास प्रग आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। कहते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माए समाना। बस्त माए ले बस्त गदाई ताको पिनना कहना जाई। बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे। अपने जन का प्रदाता कह अपने सेवक की सर पर राखे।
अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पतराखे ताकि दखमित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक पूछते ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैन प्रगटाया। नीकी कीरी महफल राखे, पसंद करे लश्कर कोट लाखे। जिसका साफ ना काटत आप, ताको राष्ट्र देकर हाथ। मानस जतन करत बो पाक, किसके कर्तव्य गिरते जात। मारे न राखे और न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत इहो मन तन तृपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, किस किच अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जंत्र स्थाने, मंत्र नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सब काम। बोलो जस जे बै दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात। करे भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सो रहे समाये। जो हुआ हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे। अवर से आनप सगली छाड, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरे, गुर वचनी हर नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड पागी है। सतगुर सिख का हल्त पलक सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है। गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए ने कामी, किसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नाम सो सेवक गुर की मतले। बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म जन राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ भ्रम। सह श्यान लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेखत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुनकर वचन करन आघाने, मन सुन तो खातम पतियाने। पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तुस लय मिलाए। जेबा एक पुस्तक अनेक, सतपुरुष पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुँच प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंधन मुक्त करे, चरण कमल हृदय सिमरे। सब बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने। क्यों हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सोए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण पास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग न लेप, मन में रखे हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख सहते नासे। तपत माए ठाट वरताई, अंध भया दुख न उठे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पौ चूका निरपौ होय बसे, सगल व्याध मन से खै नसे। जिसका साथ तिन कृपा भारी, साध संग जप नाम मुरारी। ठित पाई चूके क्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाकार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतर एक को सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, कहे प्रभा साध कै संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो धमसार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। हवर उपास सब मीत विसारो, चरण कमल में उधारो। करण कारण सो प्रभ संगरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वत्स। यो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आसरा को मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठ भावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करें पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। अनेक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगे परवान। मंत्र बोधो हर कह नाए, दैव स्थावत आवे ठाए। ताको बिघन न लागे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए। कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फांसी।
तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग सरन गुरुदेव। क्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सासत वेद विचारे। हर की पवित करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्गनता इनसे कहो तुम कर्म समाथा। राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कर्म छुटकार। अहस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने।

फिर जाप अष्टपदी। जब अकार एवं कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कोक्षे व्यापत। जब आपन आप आप सार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा।

जब होवत प्रब केवल तनी तब बंद मुकत को किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकत को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डर है। आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहां विनाशन। जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या चोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान।

कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अछेद अभेद समाया उहा किसे व्यापत माया हाथ उसको आपे आदेश।

बहु बेंत उठते ऊंचा, नानक आपस को आते तो ऊंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार, त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत, कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम तय पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की योग ज्ञान। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत चोज, आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले, ज्यों बुलावो त्यों।

नानकिए को पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जात स्पावे ता श्रेष्ठ उपाय, अपने भाणे ले समाए। कुमते पिन नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो संदर्शी तत्का बेता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अगर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जा कह सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल जी अनुभव पात, जो जो रचियो सो तिस एहतियात। जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आए, हुकम बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बस्या निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर, अन दिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो परमानंद। राम नाम तक करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पैर प्रत्ये खोनेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उद्धार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिस साज परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मंगते पहुँचाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभे खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बौर न आवे जाए। तिसते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हार ध्याए। निरपो जपे सकल को मिटे, प्रभ कृपा से प्राणी छुटे। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन देखत कुदरत श्रेष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सुहोत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पै अमरा पद पाया, साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्पट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। करण माए आकाश दयाल, सर्वलोक पूरन प्रताल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट बह दिसे समाहे। तिसते पिन नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नाम सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास।
संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ वचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार तब जाने, अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस तब ते सगली उत्पत, तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार, अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस नहीं मिलाए, कौन निकट कौन कहिए दूर, आपे आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्वभूत आप वर्तारा, सर्वनैन आप देखनहारा, सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जात एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नीमाया, सब कह मद अलिप्त तो रहे, जो किछ कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां ले समाए, इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर होए तासो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रसोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया, जन आवन का यह सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमा

जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे। प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उदरे तिन के साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर पहे सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभु की

पूरन होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब ते ऊंच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध।

पास सुंदर चतुर तट का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस दन आवे हर प्रभ चीत

चार तिस बिन अवर न जाए, जो चाहे सोई मिले नानक हर गुन गाए। गोविंद जस गाये हर नीत, मिल पजिए सा

प्रम कटिए नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा कर नीत राम।

ऐसे लाभ मिले तो ताहिर है हर दरगे पतवंत राम नाम तन संच वै साच सा भगवंत उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्म

नानक संत निर्मल पए जिन मन वसया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रम तो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाए जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभ राख ले हो।

रस बेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक, रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच, नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक। खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार, भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी। खस्तम

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिन सियो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कत

भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म पर।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल पौड़ी। अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रिय रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगन न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमें अपागे। श्लोक। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी। दसवीं दस द्वार बस कीने, मन संत

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल इहो धर्म। श्लोक दुर्मत हरि सेवा करी, तेते साध किरपाल, नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचपू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाई है, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत न काम, अतित उदारण मन बसे, नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब होना।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख उजल।

सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है।

हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याय, गुरमुख पावे कोय। महला चौथा, हौ मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरे, हर अमृत हर उद्धार, सब कार्य तिनके सिद्ध हैं, जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागती हर मेले गुरसाबास पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी तुद जेवड़ होए सो आखिए तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वै

करे कनेरिया, जे कारवत होवे साई खाए, बिन सतगुर सोजी ना पवे, अंकार न विचों जाए, अंकारिया नो दुख भुख है, हाथ तड्डे कर कर मंगाए, कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, मुलम्मा पाज ले जाए, जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुर मिले प्रव्याए, ज्यों लोहा पारस पेटी है, मिल संगत सुवरन होए जाए, जन नानक के प्रभ तू तनी, ज्यों पावे तिवें चलाए, पौड़ी जिन हर हृदय सेव्या, तिन हर आप मिलाए, गुण की साध तिन स्यों करी, सब अवगुण शब्द जलाए, अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए, बलिहारी गुरे आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए, वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो अंदिन हर हर नाम से आवे, हर हर नाम रमत सुत संजम, हर नामे ही तृप्तावे, हर नाम तान हर नाम दीबान, हर नामो रख करावे, जो चित लाए पूजे गुरमूरत, सो मन इच्छे फल पावे, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार दिवावे, फेर ओ वेला ओ हथ ना आवे, ओ अपना बीजिया आपे खावे, नरक कोर मुँह काले खड़िया, ज्यो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरणी पवे, ता उबरे जा हर हर नाम से आवे, हर बाता आख सुनाए, नानक हर करते एवे पावे। महला चौथा। पूरे गुर का हुक्म न मन्ने, ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया, उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया, ओ गल परोसी करे बहु तेरी, उस दा बोलिया किसे न पाया, ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन, उस नाल मुह जोड़े उस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते, उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया,

जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया। पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया। गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया। पौड़ी सच सच्चा सब दू वड्डा है सो ले जिस सतगुर टिके सो सतगुर जे सच त्याई दा सच सच्चा सतगुर इके। सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वर्ष के जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके। ओए बोले किसे ना पावनी मोह काले सतगुर ते चुके। श्लोक महला चौथा हर प्रभु का सब खेत है हर आप किरसानी लाया। गुरमुख बस जमायन मन मुखी मूल गवाया। सबको बीजे अपने पले नो हर पावे सो खेत जमाया। गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया। जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करते मार कढाया। किरसानी जमी पाओ कर हर बोहल बख्श जमाया। तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख त्याया। जन नानक नाम आराध्या आप तरिया सब जगत तराया। महला चौथा सारा दिन लालच अटिया मन मुख हो रे गल्ला। राती ऊंगे दबिया नवे सोत सब चिल्ला। मन मुखा दे सिर जोरा अमर है नित देवे पला। जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे से अपवित अमेद खला। काम व्यापे कसुद नर से जोरा पुछ चला। सतगुर के आखे जो चले सो सत पुरख पल पला। जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिला। सब तेरी बनत बनावनी नानक पल पला। पौड़ी तू वे परवाओ अथाओ है अतुल।

जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लिया। जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान। ओना अंदर सच मुख उजरे, सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचे, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सत

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए। पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है, सच था हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए, प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंज ले, गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले, गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है, गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे, तिसदा कदे न होवी पला, ओस दे आखिया कोई न लगे, नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे, कीता करत्या ओसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मोह कड न सके ओसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा, को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई, विच खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का, जेहा कोई करे तेहा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आख सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो बिछड़े, तिनको दर टोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई, जिन गुर गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही, ओना दा आखिया को ना सुने, नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत दुआई, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे ओस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही।

गुर की वडियाई नित चढ़े सुनाई अपर को नास कोई जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे तेज रखे प्रभ सोई पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ परम पवाई है ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना हो।

चरण तोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत पर गासिया नानक नाम समाए। पौड़ी एवं शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत। सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस तिन कह रिदे है जिन हर वस्या मन माहे हर दरगे ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे। जिन निरपो नाम से आया तिनको पौ कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पे नाई है जिन हर वुठा मन माहे कोय आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छदाहे। जन नानक को हर वेल जन तिन वेख वेख हम

ते जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिखा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया, गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा, कर कृपा सतगुरु मेलियुन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुरु पावसी, गुरपुरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा, गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आख सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच

0: अश्विनी चक्या से तृप्त रहे आघाई एहो हर रस से ही जान दे ज्यो गूंगे मिठाई खाई गुर पूरे हर प्रभ सेविया मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम को लिया हर मेलो सज

कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा, औगुणी परया शरीर है क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है मल हो मैं कड्डे तोए। सच वणन जय रंग स्यों सच सौदा होए, तोटा मूल न आवई लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिना तुर लिखिया।

सच सच्चा हर रखवाले, सच सच्चा जिनी अरादया से जाए रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले। ओ आल पता।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यों उबली मजीठ है रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे।

ती संग न करियो ओए मारे सिरजन हारे जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे। महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उधारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके जिस वल सिरजन हारिया। सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कौ जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे। श्लोक महला चौथा। क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिना सास गिरास ना विसरे से पूरे पुरख प्रदान करमी सतगुर पाई है।

चौथा सतगुर सेविए अपना पाये नाम अपार पौजल डुबदिया कढ ले हर दात करे दातार तन तन से सहा है जे नाम करे व्यापार वन जारे सिख

ये जन भगत है सच सच्चा जिनी अराध्या, जिन गुरुमुख खोज टंडोलिया, तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सबदू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

रंग सुभाए, सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए, जेहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए, नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए। पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया, सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया, सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़,

गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते।

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो अपनी आपे पछतानी, अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान।

मन मुख मूलो पुल्या विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा करदिया अंधिन गुदरै शब्द ना करे विचार शुद्ध मत करते सब हिरलै बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखा ना।

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

जे बिन सतगुर के मन मने काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारण जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम वपारी नानका वड पागी पावो। पौड़ी जो तुद पावे सो पला, सच तेरा पाना, तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना, थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना, साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना, नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी, नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौजल।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन स्वाओ जिना सतगुर पेटिया।

मर गए मर भी न सके मूल, वेमुख होए राम ते जो तस्कर ऊपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया, ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देवै।

विखय कौरतन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर खाना पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिये जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिये पव सागर संसार बिख सो पार उतरिये हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिये।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो ना चली खसम नाल लब मोह विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणियां, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान हो।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। कोई सगल की रेण का हर संग समावो, दुख न दे किसे जी पत स्यों कर जावो। पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। श्लोक दोहा महला पंजवा, एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ, जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा, जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे, हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे। चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे, गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे। प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा, पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू, जिथो वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा, चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी, हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उदरे मिता, हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता। अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता, संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता। नानक लड़ लाए।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर

तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू स्यो नाही। पत अपत ता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गो पाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग पज केवल राम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त

कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण।

राजा रंक दो मिल रोई है, जो पैरसना राम न कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। रहाओ जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौका की माया। जस जंती में जियो समाना, मुए मर्म को का कर जाना। हंसा

तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कार जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पतिया।

इस पर चाहे परच रहोस गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ

ता सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परै मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद कै पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथ ही गै मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, लेले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हो तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पे चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर माने।

कोट उपाद उलट पाई सुख सह समाद आप पछाने आपे आप रोग ना व्यापे तीनों ताप अब मन उलट सा

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी।

है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सह सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरन।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

कवन सो मुन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई। कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी। ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ। सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया।

कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों ना पठावो। गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पवना, जा रहे खसम ता राखे कवना। राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए रहाओ। काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोज

समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्ही है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे सुख देओ, जियो एक

सो जन पर कर जात न सोई, सो साहिब रहा पर पूर, सदा संग नाही हर दूर। कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही करता के। सबको कहे जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता। कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग जग को

कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रम नहीं होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसो।

होई, कुशल कुशल करते जग बिन सह, कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे।

गौड़ी। जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया, अंजन माए निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन विद अमृत पियोई है रहाओ। गुर के बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है, इहो जग बेद्या पाई, दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनुपव इक देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तिप दे, उल्टत पवन चक्र खट पे दे, सुरत सुन अनरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पई अवरे, नातर था बेगाना। रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे, जिन जैसा कर मानिया।

जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल।

तृष्णा गुण परी कट पीतर इन विद टांड बिसायो। ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बन जारा। रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहे बड हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने बिकारा हर पद दृढ़ कर रही।

जै कछ अहा तहा किछ नाही, पंच तत तह नाही, इड़ा पिंगुला सुखमन बंदे ए अवगुन कत जाही। तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहा समाई, ए संसा मोको।

जोड़न हारो सदा अतीता, ए कही है किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए विनाशी, काको ठाकुर।

मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे हो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे हो रे हीरा लाल।

उनमत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मदरस लैत बिकारियो रे। कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे। तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश। काम सुआए गज बस परे मन बौरारे अंकस कहो शीश। बिखे बाच हर रात समझ मन बौरारे निरपय होए न हर पजे मन बौरारे गयो न राम जहाज। राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा पर्या।

में राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथी न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता पौ जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज।

रमैया गुण गाय जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए विपत देखना रोए ज्यों संपै।

0: गौड़ी
1: पंथ निहारे कामनी लोचन परी ने उसासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय रागोड़ी यारवा आस पास कन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे ओ आकाश रूप दे।

कहां पया नर देवा तोखे, क्या जल बोरियो गया था, जीरे जाहेगा मैं जाना, अब जत समझ आना, जत जत देखो।

ॾाढो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंग ते डर पे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मरे।

जोन में प्रमथ नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जा कोरे कबीर को स्वामी।

जाइए नाम पदार्थ मने बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपड़े निंदक तोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माए हमारा।

ते तब तुम नाहीं, अब तुम हो हम नाहीं। अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कहता, अब बुद्ध बल न कह।

आदि वस्त अनूप बीच पाई, कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसे कर जाई। रहाओ पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन पूली, बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मूसे, दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर

दिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो।

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्ही माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार, बटक बीज में रव रहो जा को तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो, पायो अपंग अछे।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा।

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आ

निवारै, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

लक्ष्मी बरस्यों जो लियो लावे है, सोग मिटे सभी सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत।

सत का शब्द कबीरा कह, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जा कह जी जय।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजय विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कभो न

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति, राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहा, मेरी हरो विपत जन करो सुभा।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंज।

लेती है पूरब लिखत लिलाट उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी।

गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन, लिख लिख तरम विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले, गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोणी

हर त्या में तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाम तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुझ आपे श्री सब गोई।

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुर।

इत रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवे मन चीत, बैंदियां उठदियां नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहा, इत रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए, रहाओ जी उपाय जुग

तन मन हर पै आ गए जिंद, झूठ विकार महा दुख दे, देख वरन दिसे सबके, जो पुजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा विदासे परम

जो हर राते से जन परवान, तिन की संगत परम निधान, हर वार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बस

एक हर राते रह समाए, एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाए, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, सात वेद सिमरत बहु पेद, अठ अठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा कर।

0: ठोकरे।
1: ऐसा गुरमत रमत सरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग पगत हर रंगा, अनदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम पगत जन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रस नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आ गए बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सतनी साने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो जी।

संता तीर्थवासी कुंगरुवा जय जी मन लागे तो जम कहा करे मोसो आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी एक

नदर करे मेलावा होई राव सरोरड़े तन साच पछाणिया सह सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैर।

तग नहीं चाले है। हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी।

जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत

ऐसा सबे कुपरवान। सच नाम पप उपजय कर्म नाम करतार, एनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार। आसा मैला पैला दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया, चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए। लख मरिया कर एक हटे एक रतीले पाए। रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार, एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार। गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राहो, सच्चा नावन काफी है जा एनस लागे पाओ। इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का कभू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कह न जाही तेरे गुण केते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड विलायत देश वे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश भए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवे नानक जात कैसी। आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मनवासे फिर न रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो। पंच सखी हम एक पतारो, पेट लगी है जीड़ा चालन हारो। पंच सखी मिल रुदन करे हार, साहो को जूता प्रणवत नानक ले।

खिमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बो गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मेला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला खुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बौड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी शतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी।

अमृत नाम निरंजन काया ज्ञान काया रस सोगम रहाओ शिव नगरी में आसन बैठो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है निष्ठुर नादन पक विचार ज्ञान मत दंगा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं सगली ज्योत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं ऐसा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है

हर दर्शन पावे वड़ भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। खट दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

होए, गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोक द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार, निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख का तो लगे न पीर, जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख सा

समाए सेवड पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहारे जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देवे सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई किरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर अपरंपर अगम अगम।

पाए। जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर। आखन आखे बकै सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मो चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार। आसा महला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस जुग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एक छूं छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाए, गुरमुख ज्योति जोत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक होमे मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दो संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को था।

में दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंदिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची

जिहे कर्म कमाए सब दे उचो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुधाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रुन्ने अपनी पथ खोए मेरे मन हर जप

अंतर निर्मल अमृत शरणाए सदा सूचे साथ समाए। हर प्रभ वेखे सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जहां जाओ तै वेखा सोए गुर बिन दाता अवरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार आसा मैला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे पाग गुर सेवा होए। सो बुझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे अंधन जागे वेखे सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने आवन जान रहे फिर नाम समाने। जमन मरना है संसार मन मुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा दो कूर कमावे विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए पाना मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुरु गोविंद ना फिर मरे ना आवे जाए पूरे गुर ते साज समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदिन नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ। जिनको हर प्रभ ले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं ना जाए पूरे सतगुरु दित्ती वडियाई उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किच करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए ना पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहां शब्द वसे तहां दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए जिसनो बख्शे साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा नृत्य करे बहु वाजे बजाए यूं मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनल वाओ दीवा बले ना सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ। गुरमुख नृत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के वचन भगत खाए पाए हर जियो आप वसे मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर स्यों चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए। आसा कर अठवां काफी मैला तीजा ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के पाने सतगुर मिले सत सोजी होई गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई। मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा ते मन वसे ता सदा सुख होई रहाओ। इस युग में निरपो हर नाम है पाये गुर विचार बिन नामे जम के बस है मन मुख अंध गवार। हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर के पाने सालाही है पाने मने सुख होई। हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई। आसा मैला चौथा कर दूजा एक ओंकार।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए।

पहला चौथा किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर रया समाई, हम हर स्यों तरह किया मेरी हर केक, मैं हर दिन पक तरह और ना कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तरह किया जिसका कोई समरथ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कठ अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वडपाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपूरे नानक हर पाया, गुरपूरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा।

जाए वडै पाग गुरमुख हर पाए नाम हीन कालक मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया। वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण कर।

तिन हथ कर कंत बजावे जोगी थोथर वाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यों मनुआ हर रंग पेन जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वरते तिस आगे हम आदेश राओ गावे राग पांच बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल पाया नगर में कर्म हर बोवो हर जल में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जानी हर लागो मनुआ पेल आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हौ कब लग समारो नाम मेरे मन ऐसी पगत बन आई हौ हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन

आपा जय जय करे सब कोए आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो है पाए रहाओ हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख न लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी तत पावे थाए नानक आख ना राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए तगत भंडार दिए हर अपने गुण गायक वंज ले जाए।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया।

हम दिन नाम से आए हर गुण गाये, अंतर वक्त अनेक मनमुख नहीं पाये, हम गर्भ गर्भ आप खुआये, नानक आपे आप खुआये, गुरमत मन पर गास सच्चा पाये।

सतगुरु प्रसाद। हूँ उन दिन हर नाम कीर्तन करो, सतगुरु मोको हर नाम बताया। हूँ हर दिन खिन पल रह ना सकूं रहाओ, हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन। हूँ हर दिन रह न सकूं हूँ एक खिन, जैसे हंस सरवर बिन रह न सके।

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी मैला चौथा माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई, हों हर बिन खिन पल रह न सकूं जैसे कर हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो हर दर्शन मीत कहताई, जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोय हर बिन रह न जाए। राज करण जगदी सुर प्यारे मोय सरदा पूर हर गुसाई, जन नानक कै मन अंध होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस पौ बोस दिखाया, पाई मीत कुटुम्ब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

मैं प्रीत दुखिया त्यागी लोगारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राति तन सुहागन।

आचार जित गृह वसै सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किने विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परथाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टीचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर में पा सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवारे माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए आसा में।

ओछी शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

गल लाए नानक दास तेरी शरण आई प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा महला पंजवा परदेश चाग सौदे को आया वक्त अनूप सुनी लभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन यो मन लपटानी सावा पारी द्वारे आए वखर काडो सौदा कराए रहाओ साहे पठाया साहे पास अमोल रतन अमोला रास विश्व सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बक्सिंद ये सौदा गुरमुख किने।

माया मुठा फेके नहीं, पर में फूला बोती राही। बाहर पेक करे कनेरे, अंतर बिखिया उतरी केरे, और उपदेश है आत्म

पावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समरथ।

बस्तर भी कोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइश, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

अस्त्र रखत परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे

सब अंत न जाने, पंच दूत मिल फिरो विछोड़ी, प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी, जन नानक को हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया।

ठोकरा मोको कहां डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर काटान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा ते ए मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृदय अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे संत सखी मिल मंगल गाया अरहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय भाई कहे न जाले जल नहीं डूबे संग छोड़ करकत हो न जाए रहाओ कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस कोग लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर।

जा तुज पावे तं हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिब अर्थ अपेव, नानक लाया लागा सेव। आसा मैला पंजवां, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरते रूप अर रंगा। करे न चुरे न मन रोवन हारा, अविनाशी अवगत अगोचर सदा सलामत।

वार करत चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेव बिरानी कैसे गुणे अच्छा दियो प्राणी तिस्यो लूक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला जो पावे त्यों कर कृपाला आसा मेला संजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा तृत अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत पंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल सु लागो मान सतगुर तू ठेकीनो दान नानक को गुरु दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट

पूरा गुर पूरी बनत बनाए नानक भगत मिली वड्याए आसा मैला पंजवा गुर कै शब्द बनावो।

बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्यवा बुद्ध प्रगास कई मत पूरी तमते बिनसी दुर्मत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे राव महा अगा अगन का सागर गुर बोहित सारे रत्नागर दुत्तर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

आए हर साधु हर समाए लाख करोड़ी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कस छोट न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी धारी होए निमाणी सेव कमावे ता प्रीतम हो।

आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा महला पंजवां दुख दे पई प्राप्त मानक देहुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत भज केवल नाम। संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो। जब तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहू नानक हम नीच कर्मा।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप समाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुरे लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए त्याए प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एह सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अर्ध करे सास सास समारे न पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर।

हुकुम पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत तंद अंद को जागे हर जन महामोनी मगन प्रेय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सहा पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नान

पहला जन्म जो आया पहुँच न साके काबू बाते आगे ठोर न पाया रहा किस पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा ता बिगुता जे कोई न राखे ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत हूँ नाही खसमे एवे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्याप्या आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

ना छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनिया दा बिरस गया तत्काले। सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले। आसा मैला पंजवा, उदम करत हो गए मन निर्मल, नाचे आप निवारे। पंच जना ले वसगत राखे, मन में एकंकारे। तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब

मुक्ते सगल सुनावे। कर संग साधु चरण पखारे, संत पूर तन लावे, मन तन अर्थ तरे गुर आगे, सत पदार्थ पा।

आई रे आज के बस गुर कीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे माल गुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया रे सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार ना छाना रे कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे आसा मेला पंजवा बंधन काट बिसारे औगन अपना बिरध समारिया होए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यो प्रतपारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काड लिए माँ पौजल ते अपनी नदर निहाल रहाओ जाके सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइये सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइये भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाके छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्रभ पै सहाय इत उतराखन हारे प्राण मीत

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई कियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझे सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सुमानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सुकल जुग साध संकीर्तन गाये नानक नाम अधा।

महाकोरते बां पकड़ गुर काट लिए। निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रव मेरे कारज सगल सवारे। गुण निधान साहिब मन मेला।

नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा आसा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरो रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे राव। महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधया, गुर प्रसाद पय जन मुक्ते, हर हर नाम राधया। राख लिए प्रभ राखनहार है, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा, मोह मलन नींद के छुट

काम क्रोध अहंकार दाखरो संयम कौन छुट्यो री सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्यो री दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहो री ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहो री काजर कोट में पई न कारी निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आशा हर सतमा।

मन राला नानक जन गुरु पूरा पाया अंतर बार एक दिखाया आशा मैला पंजवा पावत रलिया जो बन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया सेज सुख लिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास दिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन

जिनको जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आशा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार।

हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवे सो नाम जपे जो जन सुध पावे रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म गूंजे सोई परवान साथ सब ज्ञाता निशान गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया संत नानक मेरे मन सुख पाया आशा मैला पन्नवा जहां पठावो तह तह जाई जो तुम देहो

के सूत पर होई कट कट अंतर रोया सोई ओ पट पर लो खिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता करन करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुर्लब देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलती नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाई।

कहे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा। गुरपुरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एव सफल भया कहु नानक प्रभ करी मया आसा महला पंजवा। सतगुर अपना सद सदा समारे गुर के चरण के संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाम।

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दया।

भजन इत उत कतै न डोले, कहु नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए। आसा महला पंजवा, जिसका सब किछ तिसका होए, तिस जन लेत न व्यापे कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करे सोई पल जन के, अत निर्मल दास की जुगता। रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुखने नाहे। कहो नानक गुरु पूरा पाया, परम मोह सगल बिन साया।

रहाओ मिट गया दुख बिसारी चिंता फल पाया जब सतगुर मंता सोई सत सत है सोए सिमर सिमर रख कंठ करोए कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आशा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा शरण गई प्रभु गुणी गहेरा राव तू मेरा जीवन तू आधार तुझे पेक बिग सह कोलार तू मेरी गत पथ तू परवान तू समरथ मैं तेरा तान अनदिन जपो नाम गुण तास नानक की प्रभु पै अरदास आसा मेला पन्यवा रोवन हारे झूठ कमाना हस हस सोग करत बेगाना को मुआ का कह कर गावन को रोवे को हस हस पावन रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना पहुँचना मुका फिर पछताना प्रयोग गुण में वर्त संसारा नरक सुरग फिर अवतारा कहो नानक जो लाया नाम सफल जन्म का।

चरण निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आशा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कम कर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दी जय, आशा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद कली बनी, जाके गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कि

ओजन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

है जाहर, उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब बिथाटी, उस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

ता हमको तृष्णा जा ओ निर्मल ता हम जतना हम किच नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा।

अनेक पाठ कर सेवा करिए, जियो प्राण तन आगे तरिए, पानी पखा करो तज अभिमान, अनेक बार जाइए कुर्बान, सरई सुहागण जो

है पाग ता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही

पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह

अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन आधार, होए रहे सबकी पगछार, संत रह सुनो।

गुणगाम महापवित्र साध का संग जिस पेटत लागे प्रभ रंग गुर प्रसाद ओए आनंद पावे जिस सिमरत

निमानी कंस पकड़ हम की नीरानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सुहागा कहो नानक मोरी।

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है। जिस मन उठा आप किस ना विसारी है। जो किस करे सो आप आपन पाणिया। भगता का सहाय जुग जुग जानिया। जप जप हर का नाम कदे ना चूरिए। नानक दर्श प्यास।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ।

ਸਾਰੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨੀਤਾ ਬਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਨੀ ਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकुर गौरो नानक शरण पछानी।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विकसाते मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम को नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणी है कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद। कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्श।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोह कुटुंब बिखे रसमासे मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन सरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे। नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहना। कारण करना कारण करना एक है सोहना। संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना। आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ। संग सहाई छोड़ न जाए ओ अगें अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला। आशा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ। नाम पदार्थ हुए सक

दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा। एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आये, सर्व फल पाये सगले दुख जाही, जीयन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही आसा महला पंजवा। हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ राज कहावे, हो कर्म कमावे बांध्यो नलनी परम सुआ, कहो नानक जिस सतगुरु पेटिया, सो जन ने चलसिया आसा महला पंजवा। कर चौथा।

जाए। प्रभु तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके। नानक साध शरण प्रभु संग वसे, आशा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद विकार माया माद सोयो, सूझ बूझ न आवे। पकर केस जम उठारियो, तद ही कर जावे। लोग बिखिया बिखे लागे, हिरवित चित दुखाही। खिन पंगुना के मान माते, असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा। निप्त बाजी हार मुका, पछतायो मन पोरा। दान सगल गैर वजे, परया दीवान लेखे ना परया। जिन कारज रहे ओला, सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीरत गाया। मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सोचित थर हां, अनस्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी राओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह गयो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा। नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा। नानक बड़ पा गया मेरे मना रहाओ, संत पग तोये हा, दुर्मत खोये हा, दासे रेन होए हा, व्यापे दुख ना कोए हा, भगता शरण।

छत्तीस सुजय हाँ पतित उधार ले हो हाँ नानक अरदास हो मेरे मना आसावरी मैला पन्यवा एक तुका

अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल संतावे, सतगुरु शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सेवा सुरत विभूत चढ़ावे दर्शन आप सहज कर आवे निर्मल बाणी नाद बजावे अंतर ज्ञान महारसारा तीर्थ मज्जन गुरु विचारा अंतर पूजा।

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पै उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, बिरथा जन्म गवा।

नदर करे संजोग मिलाए। रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई। सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई। कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला। अंतर साथ सबे सुख नाला, नजर करे राखे रखवाला। त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे। शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जम्मन मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुझ नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरै अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजै बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझै सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख दिन पै पगती जन्म विरंत हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप श्रेष्ठ उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक।

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

हुक्मो वर्तै जो तिस पावै गुरबिन पूरा कोई न पावै बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे सेवड़ पागे।

गुरुमुख राम नाम कृपा से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द बिन

कहते हैं जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ, ना मेरा ताहर गुण गाओ, गुर सेवा से आप पछाता अमृत नाम से।

सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरुमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन।

देवाना बन खंड माया मोहे हैराना इत उत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुरु शब्द मन नहीं थौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा रहाओ एहु मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुरु मेले काल कंटक मारे सच पेले इहो मन कर्मा इहो मन तर्मा इहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी इहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई इहो मन जोगी पोगी तप तापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर पत राखे इहो मन राजा सूर संग्राम इहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वश किए हो मैं ग्रास इकत खाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ

कही है बिन गुरु राम नाम कत नहीं है। राम नाम तन संग सिखाई एनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर।

अवरना औखद पंथ न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप फुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्दे जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर तार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग।

राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुरु सेव देखो प्रभ नैनी राव, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत कलक

बंधन सा संचय तन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मो विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर।

तिन गल सिलका पाया टुटन बहुत सरिया तन जो बन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पट गवाए जे तिस पावे दे।

आई कहां सो तेग बंद गाडे रड़ कहां सो लाल कवाई कहां सो आरसिया मो बंके एथे दिसे नाही एहो जग तेरा तू गोसाई एक कड़ी में था।

कहाँ सो कर दर मंडप महला, कहाँ सो बंक सराई, कहाँ सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहाँ सो पान तंगोली हरमा।

रामे तेग वगाई ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस्त चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी ठकुरानी इकना पेरण।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे उसनो तुमको कौन रो।

अंतर पंडित पौंदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न कीने तामसी काहे पै उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द न छूट ही तम आवे जावे एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर पगत सो जागे गुरते दर कर जानिए।

सब समाय परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारी हर्षो बने आई कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी गई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाही है सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नदर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है, गुर की कार कमाए महल पछाणी है, रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

नाले गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले जमण मरना आखी है तिन करते किया आप गवाया मर रहे फिर मरना किया साई कार कमावनी तुरकी फुरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै।

पगत दिखावे वाटड़ी, सच्ची पगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाए, पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी, मर नरक समाए, जन्म मरे परमाई।

जिस पाप कर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए। आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी।

साहिब सो मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न ला गई चाले हुक्म रजाई।

पाई है, खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदा रजाई, औगुण आरे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जा कुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई है, लाहा हर गुण गाए मिले सुख पा।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दरगह नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतो

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकर

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवट पागी जे गुर सेवा लाए, हम दिन पद सच नाम दृढ़ाए, नामे उधरे कुल सभाए, नानक साच कह विचार, हर का नाम रखो।

कर कृपा नाम मनवसाए एहो सिर दीजै आप गवाए हुक्मै बूझे सदा सुख पाए आप करे तै आप कराए आपे गुरमुख नाम वसाए आप पुलावे आप मार्ग पाए सच्चा शब्द सच समाए सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख वखाणी मन मुख मोहे परम पुलानी बिन नामे सब फिरे बोराणी तीन पवन में एक काम आया मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया बहु कर्म कमावे दुख सवाया सतगुर सेव सदा सुख पाया अमृत मीठा शब्द विचार आम दिन पोगे हूँ मैं मार सहज आनंद कृपा धार नाम रते सदा सच प्यार हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार हर जब पढ़िए हूँ मैं मार हर जपिए पै सच प्यार नानक नाम गुरमत।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा। गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख पलक सलाह है अंतर शब्द अपारा। गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई। सतगुर मिले आप गया त्रिभुवन सो जी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। पूरा सतगुर ता मिले जा नजर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई। अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए। आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई। अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए। पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाए। आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई। मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा। आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा। भगत भी ओना नो बख्शियन अंतर।

जान सोई, कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वस ना आवनी, नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा। करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही, गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही, सतगुर ते हर पाई है पाई, अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई। रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा, पार किया वक्त कमाल लई गुर सो जी होई, नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई, पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई, कारदार छोड़े अपना पर कर

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आसा महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती सालाहिए बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई। नानक सब किस नामे के वस है पूरे पास।

का बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ यो मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागनी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सुहागनी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सुहागनी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर

हों कर दी सब फिरे, बिन शब्द हों न जाए, नानक नाम रते तिन हों मैं गई, सच्चे रहे समाए। आसा मैला तीजा, सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे आगे जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर। एक गुण विहाजे अवगुण विकणे, गुर के सह सुवाए, गुर सेवा से ना पाया बुठा अंदर आए। सबना का दाता एक है, सिर तंदे लाए, नानक नामे ला।

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरो आप खुआयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत न हो वही ना सुख वो शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अनरस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुर पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, के मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अनरस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इत जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाईए ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सहलैया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

साद संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाओ। दर्शन की प्यास कणी चितवत अनेक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार। मन परदेसी आया मिलियो साध के संग

नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है नहीं चल हर को नाओ, कर मित्राई साध च्यों नहीं चल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंद।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख न होई उड़े उपमाता की जय जाका

पढ़िया पंडित आप थिया छछे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जज्जे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी पीक पव्या एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया चज्जे चूर मरो क्या प्राणी जो किछ देना

नाणे रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

जाने अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करें क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दात।

तन पिरे मेला होए स्वामी, आप प्रभ कृपा करे, सेजा सुहावी संग पिर के सात सर अमृत भरे, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन उमाहो, मुंद सहज सलोनड़िए, एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर भावे, प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै।

जब तप कर कर संयम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर, तित रतन कनेरे राम, कर मज्जनो सप्त सरे, मन निर्मल मेरे राम, निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरम करो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरुमुख शब्द पछाने।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो।

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया तापे मिलिया हदूरे। देख पिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। पिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम।

ना आवे। भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पखंड सो सो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाने। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले। मन से आनप छोड़ी है।

सतगुरु मिलिए दसवां द्वार पाया। तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रहाया। तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहा समाए। त्यों कहे नानक सतगुरु मिलिए तावत थमिया निज कर वस्याए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंगमान। मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सोजी हो।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

का दुख गवाया, अधिष्ट अगोचर गुरु बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी।

लाहा हर नाम ले जाहे, नानक मन तन अर्प गुर आगे, जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया, निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत परे पंडार।

जगत निस्तारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहे था गुरमुख पार लंघाई। हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाथ गवाया राम, गुर परचय गुर पर

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाए, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया ते मन मुख मूर अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूर पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया, माँ बिखम जम पंस दुहेला कालू खत्म हो अंधियारा, नानक गुरुमुख।

राम। मन इकत कर आने सब गत नित जाने, हर रामो नाम रसाए, जन की पैज रखे राम नामा, प्रहलाद उदाह।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद्ध गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गा।

दुख बिनासन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़े ले।

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया।

मंत्र दृढ़ाए हर रस के रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बाहुर मरण ना होई, हर हर नाम अमर पर

अवस्था महला पंजवा छंत कर पहला अणगो अणग घना मैं सो प्रभ डीठा राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर वस मीठा राम हर वस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन मान्या।

लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संगराती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधार आराम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रव सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दुध न्याई रीत अब दुध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे। खिन नाहे तरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अकलाई चित मुरारी मान न की जय।

चरणी अब कूट समोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय जैसी तरण पतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय आशा मेला पंजवा श्लोक बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे जप ताप संजम क्रिया पूजा अनक शोधन वंदना कर गवन बसुदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साज संगत मिल उधार कोट देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुपत प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बकद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खट शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिये संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश साधे तर चरनी आसा महला पंजवा श्लोक उद्यम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द न को व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पै चरण जमपे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर बिना

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरण हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नान पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये भगत कार्य सारया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया आशा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा के

रावे अविनाशी अवगत सोप्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कैमद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का कै अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप से आगी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जतन त्या कछ न कहे जम काल नानक मन तम सुखी होए अंते मिले गोपाल छंत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोर हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोर नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप पावे किसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत

पीछे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राख महारे प्रप्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तय पौन नाम तारी उधारे भगत संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे वसुध कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन बे अंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत पछू न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा पट पट वासी आप विरले किने लया जय कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या ब्रह्म पसर्या ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रया जिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप तरे दुख पुख दरिद्र नाथे प्रगत मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत चंत पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभु सरना ही किनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिन हंस नाम सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़ी है अदंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच्छ पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिन हंत नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुड़ गुपत अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पानी बिन हंस नानक रंग रात

सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा सहारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तै क्या चिर लाया मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करें पाप अमित्या तन पसंद तेरी जमे हेरी काल बकड़े जितया

दूते देन पया गोविंद प्रगटाया, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साज संग वखाणिया, अचरज डीठा अम्यो बूठा गुर प्रसादी जानिया, मन शांत आई वजी वधाई ने अंत जाई पाया, बिन वंश नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया, नरक न दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय धर्म करे दूत तय पलायन, परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे, जय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन वंश नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण, निध सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या, साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा, बिन वंश नाम सर्व स्वामी।

संग देखे करणहारा काए पाप कमाइए, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। वल वंश कर उदर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, मिल साध संगे पद निसंगे कुल समूह तारी है। सिद्ध साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजिए प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊं गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सरनाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन रासतमान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा सेज सुवंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन रंग नानक मेरी आस पूरन।

0: सूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज की तुने श्लोक महला पहला
1: बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चान होंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबुआर ज्यो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिया फुलिया बपड़े पीतन विच सुहा पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नान सच आन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नान कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दू जाए एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्मे करे विनाश इकना पाने कढ़ लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जाते जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आख करे प्रगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखनावे तरम बहा लिया ओ कह सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड़े जिजमा लिया थाव ना पायन कूड़ यार मौका ले दो जुक चालिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद कुख विस्माद तोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार

बाजारी बाजार में आयकड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लख क्या के मुंडड़े लख क्या के हार जित तन पाइये नाम का सेतन होवे चार ज्ञान न गली टूंडी है कठना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइये और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नदर करें जे आपनी ता मदरी सतगुरु पाया एह जियो बहुते जन्म प्रम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिनी विच्चों आप दुआया जिन सच्चो सच बुझाया श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली तरती माल कन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहां सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जिना मन चाहो सिक्की सिक्ख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक फल वारो ले बहुत अनंत लातू माधानियां गा पंखी पौंदियां लैन न पा सुवे चार पुहाइए जंत नाम पौंदियां गंत नांत बंधन बंद पुहाए सोए पये किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ना जाई सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाउ तेरा निरंकार है नाई ले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जाए आग गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर कुनहु नीच सदाइए जे जरवाना पर हर है जर वेश करें दी आइए को रह न परिये पाइए श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ फरियत पर पढ़ करें विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार जोगी सुनते आउन जेते अलख नाम करतार सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजे देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार इक होदा खाए चले एथाउ तिना बेकाई कार जल फल जिया प्रिया लोआ आकारा आकार कोई जी आखे सोटू है जाने तिना बे तेरी सार नानक पगता पुख सलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार कर पांडे ता किया जल्दी करे पुकार जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ तो अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चित लाया जग जीवन दा का पाया श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मोआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सत्यार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे हौ विच परिये हौ विच होवे हौ विच जाति जिनसी खोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बूझे तांगर सूझे ज्ञान में होना कब तक लूझे नानक हुक्मी लिखिए लेत जिहा वेख है तिहा वेख महला दूजा हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमाए हौ मैं एही बंदना फिर जो नहीं पाए हौ मैं किथो उपजे कित संजम ए जाए हौ मैं एहो हुक्म है पे है कित फिराए
हौ में दीर्घ रोग है दारू भी समाए कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन्नी सचो सच आया ओनी मंदे पैर न रखियो पर शुक्र करम कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बस्ती सी अगला नित देवे चने सुवाया वड्याई वड्डा पाया स्वरूप महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तत्ता मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा अंडज जेरिज उत्पुजा खानी सेत जहा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै समाले सगना जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या पग महला पहला लख ने किया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान लख तप प्रतिष्ठा सहज योग बेबान लख सूरतन संग्राम रंग में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया।

साथ पर बेड़ी पाई है पर गड़िए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला लिख लिख पढ़े आते ता पढ़िया बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या बहु पेक किया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा भाया बकर न पहरे एह निष्पहरे मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख समझे पत गवाई गिण नावे किछ खाई न पाई रह बिमाणी मरी मसाणी अंग न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस उंदे से ते ने केवल होमे सब जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक करमा बाहरे दर को न लेनी ताऊ दे एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे हों ताबी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जीत जैत आए दे।

सब जग चलनहार, कूर मिठा कूर माथो कूर डोबे पूर, नानक बखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सब तां पर जानिए जान दस चाहोए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सब तां पर जानिए जां पग करे प्यार, नाओ सुन मन रहसी है तां पाए मोख द्वार। सब तां पर जानिए जां जुगत जाने जियो, तर्क काया साध के विच दे करता बियो। सब तां पर जानिए जां सिख सकीले, दया जाने जी की किछ पुन दान करे।

सुत होए, नानक पाहे बाहरा कूरे रंग न सोए, पैर खुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए, नानक पवती जेर पै कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दो राजा मेहता कूर हो आशिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार परमी तरम करे गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड में कर बार सबको पूरा आपे हो वे कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला गदी सवज जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वेखी जगत उपाया इकना नो तू मेल लह इका को तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया।

बलहारी कुदरत वस्या तेरांत न जाई लखिया रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सुवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है। खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है। सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भयो। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा वास देव जे को जाने भयो। नानकता का दास

दुर्बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कालना तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गए आहारी है, पढ़िया अत्य ओमिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गै रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गै रथवाओ, द्वापर रथ पपे का सत अग्गै रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गै रथवाओ। महला पहला। शाम कह सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

और कर ला वो गोबर कर न जाए। तोती टिक्का ते जप माली तान मले छा खाए। अंकर पूजा पढ़े कतेबा संयम तुरका भाई। छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तरंगा महला पहला। मानस खाने करे निवाज छुरी वगाए तिरंगल ताग।

पौड़ी जिथे वे सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल न कीचे दे लम्मी नदर निहाली है जो साहिब नाल न हारी है।

परमा साहेब तुखे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नान सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाय पौड़ी, नानक अंत न जापनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इकना गली जंजीरिया इक तुरी चले बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसो करी पुकार।

जियो। गुरचरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, कवन काज जग उपजय दिन से कहो मुहे समझाया, देव करो दया मुहे मार्ग लावो।

चूके, आपा पद निर्माण ना चीनिया, इन विद अभियो न चूके, कहीं ना उपजे उपजी जाने, पाव अपाव बिहुना, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिवलीना, ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण प्रंपादा, तो मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै तोतिया, तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया, लोटे हाथ निबग ओए हर के संत न आखिए, बनारस के ठग ऐसे संत न मौके पावे, डाला सो के दागट कावे, रहाओ बासन मांझ चरावे।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओहो हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे। नाको काटी कानो काटी काट।

दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी ते कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे कोई करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहाओ, काकी माप पिता को काको, कवन पुरुष की जोई, कट फूटे को बात ना पूछे, काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लक्ष्य छुटकाए।

पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष तक तपना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुगद फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तब रे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुए लह न गयो, आई तलब गोपाल।

बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। तू मैं तन रासन को दिया, मुगद कहे तन मेरा, जम कर बंड मूंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पगत सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे, कलमा पिस्त न होई, सत्तर का बाकत ही पीतर जेकर जाने कोई। निवाज सोई जो न्याओ बिचारे, कलमा अकल है जाने, पाचो मुस मुसल्ला बिछावे, तब तो दीन पछाने। खसम पछान तरस कर जी में, मार मनी कर फीकी, आप जनाए अवर को जाने, तब होए पिस्त सरी की। माटी एक पेक तर नाना, तामे ब्रह्म पछाना, कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना। आशा जगन नगर।

हाथी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पे संग तेरे, इंद्री का बल खाता। चरण रहे कर तर्क परे है, मुखो न निक्षय बाता। थाके पंच दूत सब कस्तर, आप अपने प्रमते। थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत तर रमते। मृतक पे दस बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे। कैत कबीरा जो हर त्यावे, जीवत बंधन तोरे। आसा इक तुके चौथा, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया। जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी। जिन त्रिभवन दशियले गुर प्रसाद जीठी रहाओ। सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई, जिन सास पछान्या तिन सर्पनी खाई। सर्पनी ते आन छूछ नहीं अबरा, सर्पनी जीती कहाँ करे जमरा। ते सर्पनी ताकी कीती होई, बल अबल क्या इस्ते होई। ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहाँ स्वाम को सिमरत सुनाए, कहाँ साकत कह हर गुण गाए। राम राम राम रमे रम रही है, साकत स्यो पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहाँ कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए। सत्संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा को

कपरे तोई गुरमत राम में नाम बसाई अस्थिर रह न कटू जाई कह कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला

रहाया। दस मास माता उधर राखिया बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया, पूरव जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया। रहाओ बारिश ते बिरध पया होना सो होया, जहाँ जम आए चोट पकड़े तब है काहे रोया। जीवने की आस कर है जम निहार है सासा, बाजी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा। आसा तन रैनी मन पुनरप कर हूँ पांचों तत्व बराती, राम राय स्यो पावर ले हो आत्म ते रंग राती। गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा। रहाओ नाभि कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया असबद पाव हमारा। सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना। आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली नंद गहेली देवर के बिरह जरोरे। मेरी मत गौरी मैं राम विसार हो किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं देखो यो दुख कासो कहो रे। रहाओ बाप साव का करे लड़ाई माया सज मतवारी, बड़े भाई कह जब संग होती तब हो ना प्यारी। कह कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया। आशा हम कर सूत तने नित ताना।

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कब हूँ न पार उतार चरायो कैसे खसम हमारे तू बामन मैं काशीक दुल्हा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे कुपत राजे हर्षो मोर त्याना। आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान बाबा।

कोई आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब थाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदिर।

गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा करे मना।

में तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पदे गुने नाही कछ बौरे, जो दिल में खबर न होई। अल्हो गैब सगल कट पीतर, हृदय लियो बिचारी, हिंदू तुर्क दोहों में एक है, कह कबीर पुकारी। आशा ते पिदा एक तुका, कियो सिंगार मिलन के ताई, हर ना मिले जग जीवन गुसाई। हर मेरो फिर हम हर की बहुरिया, राम बड़े मैं।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगट जिन काड अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगट काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगट कादे की एह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाय कूद है अर नाचे कह कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म व्यतीत आशा करवत पला ना।

जैसे में डुक तैसे ओई नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाई, हर का संत मरे हारंबे ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कह कबीर नरक से त्यावो बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नरक।

ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम पे आवो। सोईने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंच के डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान माडे। काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना। रहाओ सिंगच पोजने, जो नर जाने ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आशा पार ब्रह्म जे चीन सी, आशा से ना भाव से, रामा भगत है।

भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है पांची के तक आस। मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ।

काल सास अदद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा संत तुझी तन संगत प्राण सत गुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माँ जय दी जय देवा देव रहाओ। संत आचरण

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मक्तूल सुपेत सपैयल, हम बपुरे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है मादो जैसे मधु मखीरा। जाती ओछा पाती ओछा ओछा।

तुझे चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन होत

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मए, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत सम।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया।

सोहन दिया फिर गल बाड़िया चले चलन हार विचारा ले मनो गंडे दिया छू महा तुड़न दिया हित सिनो

चौक दे कर पहला। तेरा नाम करी चरनाथिया जे मन उरसा होए, करने कुंगू जेर ले कट अंतर पूजा होए। पूजा की चे नाम त्याय बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर दे पखालिये जे मन तोवे कोए, झूठ लह जियो।

निसारे संभाले जो देवै सो खावना, कहो नानक साचा है। गुजरी मैला पहला नाभि कमल ते ब्रह्मा, उपजे वेद पढ़े मुख कंठ सवार, ताको अंत ना जाई लखना,

कर रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा दोह लोचन क्या हेर, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुर चगर निवेर, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै, दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना, जित सेविए गोविंद प्रीत उपजे, अवर विसर सब जाए। हर से की चित गहर है, जरा का पौ न हो वही, जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप से ती आप खाया, तामन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समयी। दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये, जे लोचे सब कोय, पूरे की पाल विच्चों निकले, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे, सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो। राव हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साथ अंत होए सखाई। हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई, हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाए।

सतगुरु मिले हर मन वसै, सहजी रहे समाए रहाओ। जहां पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैरागे ते हर पाए हर सुन रहे समाए। शिव मुक्त जे मन जिन्हें फिर तात न लागे आए, दसवें

ही अंत गया पछताए। क्यों मन काशी सब तीर्थ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अब सब तीर्थ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन शिक्षा से। दूजे पाए जेता पढ़े पड़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सो जी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न हो।

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो तिस

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवड़ पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपासे, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याये, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सरदार।

तुम प्राण सतगुरु गुरु पूरा हम पापी गुरु निस्तारे रहाओ। गुरुमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरुमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुरु सतपुरु

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव दिहाई, तन तन सबा सह।

जंतु पाए का कारज आ गया कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे काश सहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया उड़े उड़ आवे सह कोसा किस पाछे बचरे चरिया उन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निधान दस अस्त सिधान ठाकुर कर तल करिया जन नानक बल बल सद बल।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहा। शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर स्नाना, ब्रह्म आए थर सारी। अनक सोच करे दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग आयो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेत बुद्ध परदासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी मैला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमक न बिसरो।

अमृत पाई आश्चर्य हर प्रकार खावो खर्चो टोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे।

प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो गो हर चरणा हो कौला नानक दास।

हर जस साध संग मिल गायो, गुर प्रसाद पयो मन निर्मल, सर्व सुखा सुख पायो राव। जो कुछ कियो सोई पल माने, ऐसी भगत कमानी, मित्र सत्र सब एक समाने, जोग जुगतनी।

तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साथ, तित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचित फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, ता मैं तृष्ण न बूझी। सिमरत नाम कोट उजियारा, बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुम रे द्वार आया, तै पंजन हर राया। साध के चरण तूर जन बांछे, सुख नानक के उपाय।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदव सुत पाई, संग बनता रथ हसया, जब अंति

निदान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, ऐ कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे, रहाओ।

नमस्कार। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

सुई ब्रंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहो है एको जत्र कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछुनायो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो।

मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पही करते की और आस बिदानी लाही।

ओर चुत चुत वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास तुमरो उदरस आखी फोर। गुजी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुदर लोक आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जो है न साके मल मल तो वे पाए। अब मोहे आए पर्यो शरण आए गोज पाव को बहुत प्रजा रहे।

जगत कपटे अनक जुगत कर कायो विसरत प्रभ के ते दुख गनिय है महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी मैला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आ गए तेक कर कृपा गोविंद दिया गुरु ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवा।

प्रभ रविया सोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम अगम

सास सास ना बिसर कब हूँ ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनित रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी मैला पंजवा अहं बुद्ध बहु सजन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांसी है जन तूर कोट जन्म के लह पातित गोविंद लोचापुर रहाओ आद अंते मद आशा कुकरी विकराल गुरु ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काती है जमजाल काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागमन प्रभ प्रेम पग

निवारे मिले हर जन संत सर्व विद प्रम के पुकारे कत नाई छोट हर चरण शरण अपार प्रभ के।

तुझ बिन अवर ना खाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी, वड्डे पाग लागी, कवल प्रगास पए साध संगे, दुर्मत बुद्ध त्यागी।

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिष्माया मन तत अविगत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले शेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बित्तज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभु दाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवन हार ऐ जी जब तप संयम सच आधार हर हर नाम दिन सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ सुन समाज रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार ना पद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना ज्योत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दें दे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंत

चुकलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताएं बिन हर पगत।

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुरु वास हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहा, हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे।

भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सर।

संतं गुरु शब्द हर रमणं मत तत ज्ञानं कल्याण निधानं हर नाम मन रमणं चल चित वित ब्रह्मा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिलं मति गुरुवाक शब्द रतं परमात परम न चूकई जग जन्म व्याध।

पज शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित

हर दिन जियरा रह न सके जो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहा सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप सरे कुलतारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे ओई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अव

hukuman sir hukuma. ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। गुजरी मेला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निधि।

हरन मद मोहो दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिए रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंसै रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभु नाम।

जात। एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कब है न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मनमुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर। पौड़ी, अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन अवर

ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए। अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच। नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे

कचनी कच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सबत सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा। सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर

थोड़ी माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी हर हर नाम त्याय है हर

सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जीव सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हो मैं खोये हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विकसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुरु स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुरु सो तन सौंपया।

जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय किते न पाई है हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता।

छड जाए। केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चलदियां नाल न जाए। काया मिट्टी अंध है, पौने पुछो जाए। हौ ता माया मोहया, फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए सेती रव रहा, जीए ना ले जाए। पूरे गुरते पाईए, मन मुख पले न पाए। तन वपारी नानका, जिना नाम तन खटियाए। पौड़ी, मेरा साहिब अत वड्डा सच गैर गंभीरा, सब जग तिसके वस है, सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है, नेचल तन तीरा। कृपा ते हर मन वसे, पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया, सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा, त्रिग तिना दा जीविया, जो हर सुख पर हर त्याग दे। दुखों में पाप कमाए, मन मुख अज्ञानी माया मोह व्यापे। तिन बूझ ना काई पाए, हलत पलत ओए सुख ना पावे। अंत गए पछताए, गुर प्रसादी को नाम त्याए। तिस होमे विच्चों जाए, नानक जिस पूर्व होवे लिखिया। सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा, मन मुख ऊदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वर्तदा, कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई, मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना।

दया पछताई। अपनी कृपा करे गुर पाईए विच्चों आप गवाई। तृष्णा पुख विच्चों उतरे सुख वसे मन आई। सदा सदा सालाई है हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा। जे सतगुरु सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए। सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल सांत वसे जप।

हर सुखदाता मन वसै, हों मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अंदिन हर लिवलाए, सतगुरु पुछे सच संजम कमावे, हो मैं रोग तिस जाए, हर गुण गावे गुण संग्रह है ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हो मैं मेट समाए, नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अंदिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए, कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए, दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए, इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए, सहसा मूल ना चुकई विच विष्टा पचे पचाए, जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए, हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए। पौड़ी। जिन्ना हुक्म मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार, हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विच्चो मार, नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया, गुरमुख अंदिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया, गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया, जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना न सेवियो, शब्द ना लगो प्यार, सहजे नाम ना त्याया कित आया संसार, फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर, कूड़े लालच लग्या ना उरवार ना पार, नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार। पौड़ी। भगत सच्चे दर्शों दे सच्चे शब्द रहाए, हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए, हर रंग रहे सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए, सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता, हर जियो हृदय वसाए, बाज गुरु फिरे बिल लांदी, दूजे पाए खुआए। श्लोक महला तीजा। कल युग में नाम निधान पगती खटिया, हर उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदिन नाम ते आया, विचे ग्रहे गुर बचन उदासी, हो मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो, जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा। त्रै गुण माया वेख पुले, ज्यो देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेखे, दिखा किने क्यों आन चढ़ाया, दूजे पाए पढ़े नित बिखिया, नावो देख आया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ बधाया, छादन भोजन ना लेही सत पिखिया, मन हठ जन्म गवाया, एतड़िया विच्चों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया। पौड़ी। माया मोह प्रेत है काम क्रोध अंकारा, ए जम की सिरकार है एना ऊपर जम का दंड करारा, मन मुख जम मग पाईन जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले गुरमुख निस्तारा। श्लोक महला तीजा। हाँ मैं ममता मोहनी मन मुखानो गई खाए, जो मोह दूजे चित लाए दे तिना व्याप रही लपताए, गुर कै शब्द पर जा लिए ता ए विच्चों जाए, तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए, नानक माया का मारण हर नाम है,
ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹੋ ਮਨ ਕੇਤੜਿਆ ਜੁਗ ਪਰਮਿਆ ਥਿਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ ਹਰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਇਨ ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਖੇਲ ਉਪਾਏ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾ ਕਿਛ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਅਪਾਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਸੰਜੋਗੀ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਆਪ ਅਤੀਤ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਨਿਰਜੋਗ ਹਰ ਜੋਗੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਹਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਗੀ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाहो वाहो करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाहो वाहो करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम पूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय कित न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

आऊं जात ना जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता।

जे सतगुर दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरमुख अमृत पी

बुझाए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल फल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुर सिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है इसवाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर

जै पाए खुआए, जम्मण मरण न चुके हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु स्यो चित लाया, सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही, ना ओए दुख सहाए। नानक गुरमुख उबरे, सच्चे सबल समा।

सब फल पाया। अमृत हर का नाम सदा ते आया, संत जना के संग दुख मिटाया, नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा, खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णो, महल पगति कर सरे सज्जन पाहुण्यो, बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे, नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा, मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास। पौड़ी, प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साई, तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई, जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाई, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई, चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा, आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा, आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए, नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए। पौड़ी, आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट, आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट, आपे सागर आपे

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साथ जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किच तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हौ तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर मह पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बा सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्ण अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर चोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो लगा सत गुर सेव जा को करम तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख सह आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लहिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत पंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर हर नाम जीवा सुन सुने। श्लोक महला पंजवा।

वासनाएं मन वसाए, कोई न लगे विघ्न आप गवाए, ज्ञान पदार्थ मत गुरते पाए, तिन पाए सब भी थोक जिस आप दिवाए, तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंगड़ी मैंडा खोज न खुंबे, मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी, मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुर्मत बन जाए, मित्र असाडड़े से हों टूडे दी जग सबाया, जन नानक विरले के पौड़ी। आवे साहिब चित तेरिया पगता डिठिया, मन की कटिये मैल साथ संग उठिया, जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप, बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप, तिस्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया, ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया, रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है, जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही, तौसे सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ, तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया, हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया, पाया नेचर थान फिर गर्भ न लेटिया, नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया, तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया, सबो जपिए जाप जे मुखो बोलेटिया, हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया, परख खजाने पाए से बहुड़ न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े, जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए, नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदै ही गोचरे, सोई वरते जग जे किया तुद तुरे, बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया, शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया, तेरे हाथ निधान पावे तिस दे, जिसनो होए दयाल हर नाम से ले, अगम अगोचर बेअंत अंत न पाये, जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। कड़छिया फिरन सुआव ना जान सुनिया, से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़, तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी। आराध्यो सच्चा सोए सब किछ जिस पास, दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास, त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो, पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो, कर्म कर्म तत् ज्ञान संता संग होए, जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए, जिसनु आप दयाल तिस मन उठिया, पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी, इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै, गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही। पौड़ी। वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप, जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप, दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप, नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप, कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप, आपे लयन छाए बंधन सगल काप, तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप, वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभ हर हर सही जपात, नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागियो।

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अंदिन बिलपते जो सुंजे कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर साहेब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुस्थई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों

मुसमुस रोवे कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग ताजा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही।

रघुराय गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बौर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई।

मले ना लाछे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कहे किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई जो आकाश है कड़ूअलो मृग तृष्णा परया नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद दूध तां बच रहे।

और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पण।

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी।

0: बेसवा जोन वल वल अवतरै।
1: अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै,
0: सूकर जोन वल वल अवतरै।
1: अंत काल जो

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमं सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस स्मरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

मेरे मन मुख हर हर हर बोलिए, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोलिए रहाओ, हौ फिरो दीवानी आवल बावल, किस कारण हर तोलिए, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसकी गुलगोलिए। सतगुरु पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी चोलिए, गुर प्रसाद जन।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा करण करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरते आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांझ सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेरे अंग बिलाते।

बलिहार है नाम लख देरा मेरे ठाकुर अगमगा दियो देवगंधारी महला पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफल आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म लिवलावे रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता जो साधु संग पावे नाम उचार करे हर रसना बहुड़ न जो नी पावे पूरन ब्रह्म रविया मन तन में आम न दृष्टि आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देवगंधारी महला पंजवा चंचल सुपने ही उर्जायो इतनी न बूझे कबू चलना बिकल पयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया बिखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर माने देव कहाँ उठतायो फिर्क बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देवगंधारी महला पंजवा सर्व सुखा गुर चरना कलमल दारन मने सुधारन एह आसर मोहे करना रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन एह टहल मोहे करना बिकसे मन होवे प्रगासा बहुर न गर्वे परना सफल मूरत परसों संतन की एह त्याना करना पयो कृपाल ठाकुर नानक को परयो साध की सरना देवगंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कही है चार पदार्थ अनंत मंगल निध सुख सहज सिद्ध लही है रहाओ मान त्याग हर चरनी लागो तिस प्रभ अंचल गही है आँच न लागे अग्न सागर के सरन स्वामी की अही है पुरपराध महा अकीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है करना मैं पूरन परमेश्वर नानक के सर नहीं है देवगंधारी महला पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग शोक सब दुख विनाशे उतरे सगल कलेसा रहाओ जन्म जन्म के किल विनाशे कोट मजन स्नाना नाम निधान गावत गुण गोविंद लागो सहजाना कह कृपा अपना दास कीनो बंधन तोड़ निहारे जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे छके तीजा देवगंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन से कभू न डारो रहो साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध दिख जारो सबसे नीच आत्म कर मानो मन में एह सुख पारो गुण गावे ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उधारो देवगंधारी महला पंजवा प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर त्यान तार दिल रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा दीना नाथ प्राण पत पूरन पव जल उदरन हारा आजुवाद पगत जन सेवक ताकी बिखे अधारा तिन जन की तूर बंश है नित नाम परमेश्वर देवन हारा देवगंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा निज जा को उपजी छोड़ न कतहु जाता रहो बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिन कीनो सौत विदाता सगल समूह ले उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देवगंधारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहाओ मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देवगंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दोए कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार
कहो नानक जन को बल जाइए जो सब ना करे उधार। इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंदेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया पर उपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर्धरया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंतिवारे जब चितवो तब तुहारे।

देव गंधारी महला पंजवां। प्रभु इह मनोरथ मेरा, कृपा निधान दयाल मोहि दीजै, कर संतन का चेहरा रहाओ, प्रातः काल लागू जन चरनी, निष्बासर दर्श पाओ, तन मन अर्प करो जन सेवा रसना, हर गुण गावो, सास सास सिमरो प्रभ अपना, संत संग नित रही है, एक आधार नाम तन मोरा, अंग नानक एह लही है। राग देव गंधारी महला पंजवा कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मीता ऐसे हर जियो पाए, छोड़ न जाई सब ही संगे, अंदिन गुर मिल गाए रहाओ, मिलियो मनोहर सर्व सुखैना, त्याग न कठू जाए, अनक अनक पांत बहु पेखे, प्रिय रोम ना समसर लाए, मंदर पाग शोक द्वारे, अनहत रुण चुन लाए, कहो नानक सदा रंग माने, गृह प्रिय थीते सब थाए, देव गंधारी महला पंजवा, दर्शन नाम को मन आछे, प्रम आयो है सगल थान रे, आहे परयो संत पाछे रहाओ, किस हो सेवी किस आराधी, जो दिष्ट है सो गाछे, साध संगत की सरनी परिय, चरण रेन मन बाछे, जुगत ना जाना गुण नहीं कोई, महादुत्तर माया आछे, आयो पयो नानक गुरचरनी।

सारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिसारे देवनदारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो प्रभ गुण गाए बिखे बन करया

ऊंचा आन न संसर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाओ बहु व्यंत अत बड़ो बारो खा नहीं अगहूचा तोल न तुलिय मोल न मुलिय कत पाइय मन रूचा खोज असंख्या अनित पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे सेव को गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो ना पाई रविया रे रविया सर्वथान ज्यों बैसंत।

आओ कह पे थारो हो कर्क तराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध असाधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अन कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथे है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर सर्व नेरा ताकि शरण आश्र प्रभ नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्ष्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साक्ष

मैं एक अनंत अनूप खाओ रिद्ध सिद्ध निज कर कल जग जीवन सर्वनाथ अनेक नाओ दया मया कृपा नानक पो सुन सुन जस जीवाओ। इको अंकार सतगुरु प्रसाद राजदेव गंधारी महला नावा। ये मन नेक ना करो करे सीख सिखाए रहो अपनी सी दुर्मत से ना टरे रहो मद माया ते पयो बावरो हर जस नेक उचरे तर पर पंच जगत को ढके।

मात पिता पाई सुत बंदक अर्पुन गृह की नार रहो तन से प्राण होत जब न्यारे तेरक प्रेत पुकार आज घरी को नहरा करते देख निकार मृग कृष्णा।

तो चीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहूने समझत सिख गय हार्यो नीत नानक पौजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद राग विहागरा चौक दे महला पंजवा।

बहु बंदे परिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पचहारे और बहु लोग सियाने रहा छिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते परे परे सखनावे यह तांको विभारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब तेरे न्यारा अगलत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल कर्म तज नानक प्राणी चरण ताहि चितलायो। राग बिहागरा छंत महला चौथा कर पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़ी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से को

कोई हर सब आन मिलावे राम हो मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी ए हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरुमुख सभा आराध हर मेरी जिंदगी ए मन चिंदेड़ा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी ए वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी ए गुरमत नाम प्रगासे राम हो हर बाज उदीनिया मेरी जिंदड़िए जो जल बिन कमल उदासे राम गुरपूरे में लाया मेरी जिंदड़िए हर सज्जन हर प्रभ पासे राम तन संग गुरु हर दसिया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम बिगासे राम राग बिहागड़ा महला चौथा अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़िए अमृत गुरमत पाए राम हो मैं माया दिखे मेरी जिंदड़ी ए हर अमृत दिख ले जाए राम मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़ी ए हर हर नाम ते आए राम हर पाग बड़े लिख पाया मेरी जिंदड़ी ए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदिया मेरी जिंदड़ी ए जो बालक लग दुध खीरे राम हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदड़ी जो चात्रिक जल बिन तेरे राम सतगुर सह नहीं जाए पाओ मेरी जिंदड़ी गुण दसे हर प्रभ तेरे राम जन नाम हर में लाया मेरी जिंदड़ी कर वाजे शब्द कनेरे राम मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी बिख बांधे हो मैं जाले राम जो पंखी कपोत आप बनाया मेरी जिंदड़ी त्यों मनमुख सब वस पाले।

गुर सतगुर मीठ लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम।

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आ रहे राम। पौन पानी बैसंतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम से

जो मनुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

जिन्नी एक मानू एक आराध्या मेरी जिंदड़ी है तिना नाही किसे दी किछ कदाराम गुर सेवया गुर सेवया हर महल पाया मेरी जिंदड़ी है चक मारन सब निंदक कंदाराम जन नानक नाम से आया मेरी जिंदड़ी है पुर मस्तक हर लिख छदाराम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ तू जाने जो जिए कमाए राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदगी है सब वेखे मन मुकराए राम मन मुखानो

ए मन तन सब अर्पे हा राम, मन तन तन सब प्रभु केरा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा जन कह नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे वे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया।

जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पाए अड़ा कर आए। राग बिहागरा महला पंजवां अत प्रीतम मन मोहना कंठ सोहना प्राण अधारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

बहु खजाना तिन पे हर जियो हर कीर्तन लाहा राम। काम क्रोध ना लोभ ब्याके जो जन प्रभ सियो राखिया।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु के आए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्थ तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत हर

नानक शरण समरथ स्वामी पैज राखो मोरे। जाके ही छड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम।

पौड़ी। सब तेरी तू सब सदा, सब तुद उपाया, सबना विच तू वरतदा, तू सबनी प्याया। तिसगी तू भगत खाए पाए, जो तुद मन पाया, जो

नानक सब किछ आप है अवर न दूज जाए पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा, तुझ जेवड़ अवर न कोई नी, तुझ जेवड़ होर शरीक

सतगुर कै तै पन ना करो रह अंक समाए अंदिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

कथे ना पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर में किन ना पायो पौके मुए बिन लाए गुरु के शब्द मन तन सुजे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कथी जय आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला की जा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार दिख माया तन

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारज तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा।

आप मद अमृत सृष्टि तार सत संगत छो मिलाप होए लिव कटोरी अमृत परी तीसी कथे विकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे

ओ सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा बन जारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब तिसेनो सालायो संतो जिन दूजे पाव

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप।

पौड़ी। आपे सब कट अंदरे, आपे ही बाहर, आपे गुप्त वर्तदा, आपे ही जाहर। जुग छत्ती गुबार कर वर्त्या सुनाहर, ओथे वेद पुराण न सास्ता, आपे हर नर हर। बैठा ताड़ी लाए आप सब दू ही बाहर, अपनी एक

तुर खसने का हुक्म पाया बिन सतगुर चेतिया न जाए। सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए। दम दम सदा संभालदा दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए। पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए सियाना आपे मोनी वर्तदा आपे

बस सब जो तेरे बस है तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कह पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाओ सब पदार्थ पालन सिमरन सच लाहो संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो श्लोक महला तीजा सब कुछ हुक्मे

सतगुरुओं को हर दिया, सतगुरुओं को हर दिया बुझाए रहाओ, दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, सिना मैल न पाए, दूजे पाए करू की दुख पावे आगे जाए, गुणवंती नित गुण रवे।

साचे नाए रते बैरागी पाइन मोख द्वारा। एक वो सच वर्ते सब अंतर सब ना करे सतपाला, नानक इकस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला। बड़ हंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है, गुरुमुख साचे लगे ध्यान

गुरुमुख जात पत फट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करे।

मन बिरसा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हो मैं जाए रहाओ, हो मैं सब शरीर है, हो मैं ओपत होए, हो मैं वड़ा गुबार है, हो मैं विच बुझ ना सके कोई, हो मैं विच पगत ना हो वही, हुक्म ना बुझे आ जाए, हो मैं विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हो मैं गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे।

अपने गुरु को जाता रहाओ। मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाओ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हाओ क्यों मिला मेरी माया। हाओ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे। वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी। हाओ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने हाओ क्यों कर पिर को मिलो एयानी। जो पिर पावे सा सुहागन साई पिर को मिले सियानी रहाओ। मैं विच दोष हाओ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे हाओ पिर चितना आवा। जिन पिर रावया सापली सुहागन ते मैं गुण नाही हाओ क्या करी दुहागन। नित सुहागन सदा पिर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे। तू पिर गुणवंता हो अवगण यारा मैं निर्गुण।

मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए पुछा अपने सतगुरे गुर पुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा से आए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी सितलाए हो सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हो क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हो सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावेड़ा सच सवरा हो जाए पुछा सुहाग सुहाग।

मेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभु का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभु नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभु का मैं

हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के।

रहाओ लाख भगत जाको आराधे लाख कपि सर कपि साधे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्ते जाने तोरा है कोई साजन परदा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वडहंस महला पंजवा तन सोवेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वडहंस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को सब

जिने तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओत तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राता वढ़ंस महला पंजवा।

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नजर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे शरण परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंजवा विसर नाही प्रभ दीन दयाला तेरी शरण पूरन कृपाला रहाओ जय चित आवे सो थान सुहावा जित वेला विसर

रे मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नहीं रे मेरे मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिन लाता हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई।

अब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए, जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सो रहा समाए, हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली, जिचर मैं जानिया।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए ताओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहि समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार।

अधिकाई काम क्रोध नित्य संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस पीजै रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

नहीं आई है, ना ता को प्रमाण सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा, ताम साचा पाई है। लिखे बाजू

काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है, ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया, सुख मन मैं आए वस्या जाम तै फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया, वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे नाख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना, जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना, जो दे सेना मने कहना आख नाही वावना, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब उपायन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, किछ पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समतरे, नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला, करो दया तेरा नाम वखाना, सब उपाय है आप आपे सर्व समाना, सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया, एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया, लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना, सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समाना, गावन सुरनर सुगड़ सुजाना, सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही एला जन्म गवावे, एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना, नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना, तेरा वक्त सुहा

चढ़े सवाया, एक करम तरम न होए संजम, जाम ना एक पछाणी, वक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। हों बलिहारी साचे नावे, राज तेरा कब हो ना जावे, राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कब हो ना जावे, चाकरता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हों बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे, जपे

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

आप अलख अपारा तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप भाणी तिच मन की पूरिए सारंग ज्यों पग तरै ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अपने पिरके रंग रती मोइये सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोइये फिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर सियो निहो रचाया आप गवाया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे साहे सवारी निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम फिर रव रहा पर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे सुहागणी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया रंग स्यों रलियां माने सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिगार बनाया हौ मैं मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावे सदा मुइये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जां चले सतगुरु पाए। वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब वापार पला जे सहजे की जय राम अंदिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम लाहा हर रस लीजे हर रावी जय अंदिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस पीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस कुंज तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके तृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर वापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड़ पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारन हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई। वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो
अपने घर तू सुख वसे कोहे ना सकै जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साकै साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल

सब दुख है खोटा एहो वापारा राम। कूर बोल बिख खावणी बहु वधे विकारा राम। बहु वधे विकारा सहसा एहो संसारा बिन नावे पत कोई। पढ़ पढ़ पंडित बात बखाने बिन बूझे सुख ना होई। आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा। माया मोह सब दुख है खोटा एहो वापारा। खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम। खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम। उबे करन पुकारा मुगद गवारा मन मुख जन्म गवाया। विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया। मन मुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा। खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम। आप करे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम। जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वड्याई राम। ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई। जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बख्शे सोई। गुरु प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई। आप करे किस आखिए होर करना किछु न जाई। वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम। गुरमति हर नाम बनजी है अतमोल अफारा राम। अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी। अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी। नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा। नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है के वापारा। हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम। गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम। रसना हर रस पी जय अंतर पी जय सात शब्द विचारी। अंतर खूटा अमृत परया शब्दे काड पिए पनिहारी। जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रवि जय। नानक नाम रते से निर्मल होर हौं मैं मैल परी जय। पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ फूक दे किस पे करें पुकारा राम। माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम। माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई। बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा बिष्टा माए समाई। जो तुर लिखिया सोए कमावे कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते तिन

गुरमुख ए मन रंगी है दूजा रंग जाई राम है, दूजा रंग जाई साच समाई सच परे भंडारा। गुरमुख होवे सोई बूझे सत सवारण हारा, आपे मेले सो हर मेले।

सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम, माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम, हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई, जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई।

माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के पज पे हर शरणाई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे रख ले वो देहो वडाई राम, रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड अवर ना दाता सेवा लागे सेवड पागे जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर शरणाई, जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम, आपे दे बुझाई अवर ना पाई, गुरमुख हर रस चाखिया दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया कर मैं निज कर पाया सतगुरु दे वडाई, नानक जो नाम रते सही महल पाइन मत परवान।

राम दृढ़ाए, जप हर हर नाम विकसे राम। जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निध पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

गुरजेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस महला चौथा। हौ गुरबिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सत गुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम ते आया। जिस कारण हौ तू सुनेंदी, सो सज्जन हर कर पाया। एक दृष्ट हर एक हो जाता, हर आत्म राम पछाणी। हौ गुर बिन हौ

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हो वारी दुर्सिख ली त्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे, अवर न करना जाए। बहुत स्यानप लया न जाए, करता के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक।

हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम सिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर विनाशे सतगुर से परम पद पाया।

नेफल जन्म किन बिछा गवाया, ते सापत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ सूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्स न करियो, जिनी हर हर नाम न प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरख न पाया, हम चात्रिक दीन हर

ना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते, दुख लाखे पाप सुन तापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया हरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी हर जपिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विखंपयंगा अनतरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़वट पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा करियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकरो कड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर वखाणी हर रंगी तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन

हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई। वडहंस महला चौथा दे तेज नड़ी।

हर नाम गत नित जानिया, सब जन्म सुख लियो किया करते, हर राम नाम बखानिया। हर राम नाम सलाहे हर प्रभु हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक हर

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सत गुरु बाणे श्लोक।

दुख नाश परम विनाश संते जग जगदीश ईश्वर जय जय। मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा, कहो नानक तिन कन्ये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडया, नानक जाने सत साई।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

काट काट हर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा विराजे, अगम अगोचर ऊंचा, गुण के अंत किस कह न जाई, कोई न सके पहुंचा, आप उपाय।

आप साजिया सचना अलख अपार गोयपुर जोड़ विछोड़न गुरबिन कोर अंधारो सूरज चंद सिरजन एन चलत विचारो सचड़ा साहिब सच

वडहंस है सच नाम उद्धार सत संग्रह है सद सच रहे सच्चे नाम प्यार सदा निर्मल मैल न लग गई नदर की थी करतार नानक हो तिन